0: આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્રના પ્રસારણ છે એફએમ બેન્ડ 102.2 મેગાહર્ટઝ પર. અત્યારે સવારના 6 થવા જાય છે. દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર અપાશે. બસ હવે થોડી જ વારમાં
1: આજ 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ હે. ઇસ વર્ષ કા વિષય હૈ બઢતી ઉમર કે પ્રભાવ કો રોકને કે લિયે યોગ. આજ મુખ્ય કાર્યક્રમ પશ્ચિમ બંગાળ કી રાજધાની કોલકાતા મે રેડ રોડ પર હો રહા હૈ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કાર્યક્રમ મે યોગાભ્યાસ કા નેતૃત્વ કરેંગે. ઇસ કાર્યક્રમ મે દેશ વિદેશ સે લાખો લોગો કે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ સે જુડને કી સંભાવના હૈ. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी. कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा. राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी. राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे. राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे. इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है. इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है. INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है. INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है. INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है. नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है. स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है. परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है. परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी. परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे. श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे. इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे. श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन

0: करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी
2: આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્રના પ્રસારણ છે 6:05 થઈ છે સાંભળીએ ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ ભવસાગરના મોતી નરસિંહ મહેતાની રચના

0: 26 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निमित्त प्रसारित।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी have arrived at the iconic Red Road, and the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय

0: ये बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर, गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर.एन. रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी enthusiast here, and now the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari.
3: Bande Samabeto Sunagorik Bhadramandali Amader Modhe Upobishto Hoyechen Bisher Sobcheye Jonopriyo Neta Bharatbarsher Jashoshi Pradhanmantri Ebong Jar Hat Dhore City of Joy Ei Kollaloni Tilottoma Kolkata Tatha Pashchimbonge Joke comes to home, joke bonge phire elo, sei mananiyo Narendra Modi ji ke 11 koti Pashchimbonga basir pokkho theke, rajya sarkarer pokkho theke, hidoy theke shagoto, obhinondon, shraddha, kritoggota ebong pranam nibedan korchi. Mahamohim rajyapal mananiyo Aryan Ravi ji royechen, bharat sarkarer माननीय स्वाधीन दायित्व प्राप्त राष्ट्रमंत्री प्रताप राव यादव जी রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন माननीय প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না কারণ আমাদের অজানা আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিম বাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে ইতিমধ্যে প্রায় 257,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে দার্জিলিং থেকে দীঘা কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন আমি কথা বাড়াবো না শুধু একটা কথাই বলবো 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন যোগই একমাত্র মুক্তির উপায় যোগই আনন্দ যোগই প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি বেদ উপনিষদ গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন আমি আর কথা বাড়াবো না ইতিহাস আমরা জানি আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026 আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম ভারত মাতা কি
2: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see

0: Leave that to the Honourable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honourable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honourable Prime Minister, Sri Narendra Modi, is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
1: Rajpal Sri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि

जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं योग मानव के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep life.

child disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे।

0: साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूहों को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honourable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honourable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
3: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए।

0: आस्ते आस्ते दुटो चोख के खुलुन दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए दुटो हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए निजर जाएगा
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
0: हम सब
1: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है योग साधकों के बीच
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है सांस्कृतिक आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की हमारे मुनियों की विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है आप हमें इसका लाभ बताएं
3: जी ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
1: जी
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी हैं और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
1: जी
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है साथ ही हमारे जो हेड का सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
1: जी यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है ये हमें आपने अभी बताया हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना ऊपर नीचे करना ये ग्रीवा संचालन में आता है ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
1: जी और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही गणमान्य अतिथि हैं और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं
2: Guruji, Manish Naje, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. Hamari chetna hamare shareer ko follow karti hai. Hum chitt se kaya ki taraf badhte hain. To ye jo grivasan hai, isme hum kya hota hai ki hamari जो चेतना है हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है मतलब उसकी इंटेंशन उसकी पहुंच उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो
1: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में
4: योग पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्म पूरा विश्व पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी

0: होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप योगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंद चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंद चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे

0: विश्व का सत एक ही होता है
1: जी। yes, and और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है। और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
0: And as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: Ji, yahan par abhi पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
0: एंड वी कैन आल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज

0: हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
2: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और and now about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये
0: जी। और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: नाउ आई थिंक the enthusiasts are performing vakrasan.
0: So, जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
1: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा

0: देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन। और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है। और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्धउष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
1: जी। गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है।

0: है, और मैं तो ये बहुत खुश हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी। और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं, जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है जी। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं, उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
1: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक, कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्तासन जो है, आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी।
2: और पवन मुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्तासन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके की वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
1: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
0: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
1: जी।
0: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है। हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक

0: हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
1: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
2: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आया मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
3: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
2: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक

0: आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद।
1: क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी।
1: भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है
1: ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
0: जी।
1: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, व्हिच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। डॉक्टर प्रतिमा,
1: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
0: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी, इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा, और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
0: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना,
4: शांति
0: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और

0: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
1: और धीरे धीरे
0: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है, तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yoga asanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
0: जी, जल थल नभ सभी योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
2: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म आवर लिसनर्स दैट एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज मेंशनड दैट द गिफ्ट ऑफ इंडिया was just not only Lord Buddha or peace, but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our ऑडियंस?
3: यस, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट उस सिर्फ स्टैचू हो जाएं। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं।

0: ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munesh Sinhaji mentioned, and as you also mentioned, Neelamji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that

0: that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यालयों में संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार, डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में. कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ. ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया.

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर

0: पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
2: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्मचेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

0: कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
2: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली
3: सुपर फास्ट
2: एक्सप्रेस के यात्रियों,
4: आई एम हियर। तने नहीं आने, मोबाइल चार्ज करवो है तो
5: दिमाग चार्ज कर।
4: आवा पब्लिक पोर्ट थी फोन चार्ज करियो तो पर्सनल डेटा थशे पब्लिक।
5: जोयू
4: पप्पा हूँ पे करू छू, नो सिग्नल। हवे शू करेश, फ्री वाईफाई छे ने।
5: बुद्धू सुधरी जा।
4: पेमेंट्स माटे नो ओपन वाईफाई, मतलब फ्रॉड ने करो। बाय बाय। RBI कहे छे,
5: करो योग्य शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: छेल्ला 12 વર્ષથી અહીં વિકાસના સંકલ્પો કદી અટકતા નથી, પુરુષાર્થની ગાથાઓ ક્યારેય ખૂટતી નથી। આ યાત્રા છે છેલ્લા 12 વર્ષથી વિકાસને સમર્પિત યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની। 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના। આ સફર છે માં નર્મદાથી જળ સમૃદ્ધ થતી ધરાની, સ્માર્ટ સિટીઝથી દુનિયામાં ચમકતી આધુનિકતાની, બુલેટ ટ્રેન અને વંદે ભારતની ગતિશીલતાથી લખાતા એક નવા ભવિષ્યની, અને ગગનામતા ભારતના આત્મવિશ્વાસની। 12 વર્ષની આ યાત્રા છે ગુજરાતમાં અંત્યોદય।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: शौकीन फिल्म गीत किशोर दा आवाज में।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: वाली फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहां रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बॉम्बे आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी।

0: राम तेरी गंगा मैली, मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, तो एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है, वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सचिन जी ड्रेक की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
1: वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू हिज मैजेस्टी फॉर ग्रांटिंग अस दिस इंटरव्यू।
2: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
1: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
2: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
1: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
2: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
1: I would like, if I may, to add a personal request to his majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
2: हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
1: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
2: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
1: After which the company will assume the administration of Oud.
2: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
1: I hope the king has understood what I've said.
2: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
1: What is this? May please tell His Majesty that I have no use for that.
2: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
3: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
0: और अब जहां तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी, तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। मेरे एक दोस्त वहां बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले, तो 5-6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
4: अच्छा।
0: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी का एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था, वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत हो।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं।

0: कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी, तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: चीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के, मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं, तो ये मजा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ, उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने

गीत मुझे बेहद पसंद है, और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ एक दो साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहां पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिक ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, अब मैंने उनकी आवाज पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

0: रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल 23, 24 અને 25 जून समग्र राज्य में योजा शाला प्रवेशोत्सव तमे पण तमारा बाळकनु नाम नोंधावो अने भणवानी तक आपो।
1: अरे भाई तया सांभळ्यु, आपणे दरियामां होईए तो आ इंटरसेप्टर बोट आपणी अने देशनी रक्षा करे छे।
2: गुजरात राज्यना दरिया किनारे कुल 27 इंटरसेप्टर बोट आपणी सुरक्षा माटे दरियामां सतत पेट्रोलिंग करे छे अने आपणे पण तपास दरमियान जरूरी दस्तावेजो अने साची माहिती आपी तेमने संपूर्ण सहकार करवो जोईए। आपणने दरियामां के किनारे अजाणी बोट, व्यक्ति के शंकास्पद हिलचाल देखाय तो तरत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पोलीसने जाण करवी जोईए। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षानी खातरी। गुजरात मरीन पोलीस द्वारा जनहित में प्रसारित
3: कार्यक्रम में हवे सांभळीए किशोर कुमार ना कंठे नमक हलाल फिल्म नू आ गीत।

Mm-hmm. Yeah.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800 11 78 0

0 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 21 जून 2024 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस निमित्ते प्रसारित।
1: छेल्ला 12 वर्षथी अहीं विकासना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थनी गाथाओ क्यारेय खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्षथी विकासने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदीना नेतृत्वनी। 12 वर्ष विश्वासना विकासना जनकल्याणना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरानी, स्मार्ट सिटीज थी दुनियामां चमकती आधुनिकतानी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारतनी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्यनी अने गगनांबता भारतना आत्मविश्वासनी। 12 वर्षनी आ यात्रा छे गुजरातमां अंत्योदय अने गरीब कल्याणनी, सेवा अने सुशासननी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नू ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजी।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली

0: पीटी पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी छे श्रोता अने वक्ता वच्चे नो सुरेख सेतु इटले आकाशवाणी माहिती अने मनोरंजन नो मनगमतो मनोरथ इटले आकाशवाणी आकाशवाणी द्वारा पीरसातो विविध रसोती भरपूर अन्नकूट इटले आकाशवाणी कला साहित्य संगीत अने संस्कृति नो सुभग समन्वय इटले आकाशवाणी ज्ञान सत्यनिष्ठा विवेक विश्वसनीयता अने पारदर्शिता नी वाणी इटले आकाशवाणी भारतीय संस्कृति ना वारसा ने उजागर करती जने जानी ते छे मारी तमारी अपना सौनी आकाशवाणी आकाशवाणी आकाशवाणी। हवे आकाशवाणी नी विविध चैनलों ने डीटीएच उपरांत मोबाइल फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग ना माध्यम थी आप सांभळी शको छो विश्व मां गमे त्यां। बस AIR नी वेबसाइट पर जाओ, लिंक डाउनलोड करो अने सांभळता रहो आकाशवाणी आकाशवाणी।
0: कार्यक्रममां हवे चंदन दास ने सांभळीए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मित्रों, कार्यक्रमना अंतमा मिताली सिंह ने सांभळीए।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

संस्कृत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। विविध भारती की सुर लहरियों की खनक आ चुकी है श्रोताओं, आपके आंगन में लेकर सुरीला सफर, जहां हम और आप मिलकर गीत संगीत का ये सफर तय करते हैं। तो आज भी थोड़े खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजरेगा ये सफर, सुरीला सफर। हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने पढ़ी ली है आज की इबारत टेक्स्ट और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। तो हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर आज का ये टेक्स्ट या इबारत कह लें पढ़ देते हैं। राजस्थान की वो मखमली रात, रेत में पानी सी लहर, चांदनी ने चंदा से कहा, केसरिया बालम थाने नैना में रमा लूं, चल मेला देखूंगी, सोना चांदी मीनाकारी के जेवर सब खरीदूं, पहनी माथे की रखड़ी सात रंग की चुनर, तो देख बींद ने कहा खूब लगती हो, लगे होरी आई है, जहां जहां मैं जाती हूँ गुड़िया गुलाबी पत्थरों महलों की अटारी ऊंट की सवारी सब जैसे नैनों में बादल

सच इनके बिना जी न लगे। पीतल की गगरी नारी हाथ न लगाना, पानी का मोल जानती भी है। बींद बोला, अरे बींदनी, अरे दिले नादान, ये आरजुओं का शहर है, जो आएगा वही समझ पाएगा। तो श्रोताओं, ये थी आज की इबारत या कह लें टेक्स्ट। रेगिस्तान की बेशुमार खूबसूरती को अपनी आगोश में समेटे प्रांत राजस्थान ने श्रोताओ जहां ऐतिहासिक धरोहरों को समेटा है, वहीं यहां लगते मेले, यहां की लोक संस्कृति, कला और सुंदर वन्य जीव राजस्थान के कुंदन हार की तरह हैं। तो आज राजस्थान की बातें, रेत की बातें। जी हां, जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो नमक का रेगिस्तान भी है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोताओं। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सौंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया पालम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहां पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम, संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली। रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती सी चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समंदर में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन, साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत, कोमल और निश्चल रूप को दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के बहाव का एक रूप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डूर फिल्म का ये गीत था करसन सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान की रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो से नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ एक गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत सुरीले सफर में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी आभूषण अपनी बारीकी, नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊंटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊंटों की सवारी की है, तो हमें जरूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं,

कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहाँ तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी, तो आप जरूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है।

इस गीत में श्रोताओं एक दुल्हनिया है जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नजर आती हैं हेमा मालिनी। श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफर जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई। रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मोरी गागरी और मंगवा दे और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहां के लोकल ड्रेस में फोटो खिंचवाए। जहां लोकल ड्रेस जहां की भी हम घूमने जाते हैं वहां की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हो तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें जरूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा। जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है। महिलाएं आज भी हाथों में सफेद चूड़ियां पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति कितनी

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोता, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो खास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ खरीदारी की है? ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं राजस्थान में ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सदियों में खास करके वहां साइबेरियन पक्षी आते हैं, चार महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नजारा देखने का मौका हर रोज मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप जरूर लिखिए हमें श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं, और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन जरूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती हैं लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और कठपुतलियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

सैफी आजमी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मैनु पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से, जो सिमी ग्रेवाल और सखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छत्रियां, स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ राम गोपाल पोद्दार की छत्री के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छत्रियां जो है वो बड़ी ही प्रसिद्ध है। श्रोताओ, आप इसके बारे में भी जरूर देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी छत्री है और राजस्थान की सबसे बड़ी छत्रियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत शूरवीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था, तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है, वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। खासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आप को बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात, पंजाब और आगे भी फैला हुआ है, तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियाँ हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहाँ की ये कठपुतलियाँ हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमती और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अनमोल देन, जिसे भारत ने नहीं आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसे कई सारे नए नए नाम दे दिए गए हैं और उन नए नामों के साथ भी योग अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना, यही युज है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको आपके अध्यात्म से जोड़ देना ही योग है, और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को एक साथ जोड़ देता है। भाग दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के नियम, साधना, ध्यान और जीवन में संतुलित बनाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं।

योग का इतिहास सहस्रों वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। पहले योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे। धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार हुआ और आजकल लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग करने के अनेकों लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और लचीला बन जाता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाएं तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पीठ दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मन को शांत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह, उचित इलाज के साथ अगर योग किया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो योग अति आवश्यक है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमें स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कौन कौन करेगा योग, आज से विचार कीजिए, योग में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत सरलता से जीने की राह देता है। योग रोग निरोध करता है।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
4: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन

0: बनाती है तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल

0: कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
2: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया।

कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा, देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला उपेन अय्यर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा, हसर जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्जी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: भरी का संगीत था। सदाबहार नाम में कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, एस डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोताओ परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलील चौधरी।

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01:30 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओं, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

शोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़ खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्रे इसी गीत को सुनना चाहते थे, अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से, और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभु दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

0: मशहूर हो जाए।
1: खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल की तर्ज थी श्रोता। इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाह बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो। अरे रानी माँ से

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार, नसीन परवीन, रोजी बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहेगी।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल धानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला, वाह बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग पेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलेज, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में भेज को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम है मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए है।
2: नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलेस क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलेस?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं। खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
4: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
2: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
2: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना।

0: जाना है।
1: ये लीजिए, मैं आ गई। देखिए,
0: क्या नाम है तुम्हारा?
1: जिनी पैराम्बा।
0: क्या करती हो?
1: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
2: सर, लगता है इसे कहीं देखा है।
1: कहीं सड़क, बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
2: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
0: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
2: हाँ, वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
0: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा, तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
1: जी हाँ, चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
0: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
1: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
1: जी, मेरी?
3: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
0: प्लीज मिसेस मोलायर, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
1: आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
3: नहीं, वो क्यों जाएगी?
0: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
1: मैं कहां जाऊंगी?
2: मेरे साथ?
3: नहीं
2: सर, मैं ये कह रहा
0: हूं। जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
3: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ।
0: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
2: सर, मैं कह रहा था कि
0: जिडू, जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
1: नहीं,
0: इट्स माय ऑर्डर।
1: मौसी, नहीं, छोड़ दो मुझे।
0: अच्छा।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? ओह नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है जो कुछ ना कुछ मुझे सोच

0: ना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाई? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए जिनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: जिनी?
1: जी हाँ, जिनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं। धन्यवाद
1: मिस्टर मुलाय। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, चार नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: कौन? जिनी? ये जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
1: तुम कैसे हो बेंच?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: हाँ, बेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
0: इसे इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए कहिए, क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया इसका मुझे यकीन है, लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
0: जिनी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जिनी,
1: मुझे बचाओ।
0: जिनी,
1: बेंच,
0: जिनी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, उसे क्यों लेकर आए हैं, बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए हैं, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
1: हाँ,
2: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
2: सॉरी मिस्टर मुनाइन, आपकी वजह से, सिर्फ आप ही की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
2: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन,

पत्नी अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेज, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलाइज?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलाइज, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद, आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रेटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: ने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच, कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी ग्रह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड

0: Bendy! Bendy, may I you, Bendy! Bendy, Bendy, Bendy! आप लोग मेरे बेंच को सिर्फ एक बार देखने दो, सिर्फ एक बार देखने दो।
1: हमें अफसोस है मिसेस मुलाय, सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश भर है।
0: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो। मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी।
1: सचमुच मैं बहुत दुखी, लाश देने का ऑर्डर नहीं
0: है। ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, वो मेरा खून है, उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब।
1: Really? We are sorry.
0: बेंजी, अपनी कविता की कॉपियां भी तू लेता जा बेंजी, ये सारी कॉपियां लेता जा।
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे, और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था, और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े, लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था, तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं ये सुनंदा ने

करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को

0: भी सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी दो बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ इस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था, तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी। दो महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर, और डेढ़ महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए।
0: राइट।
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे। तो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी

0: इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय, और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं।
1: ओ
0: हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है, मैं जॉब कर रही हूं, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई, उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह,
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या प्यारी बात है। यहां एक बहुत क्यूट बात सामने आई है, और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं, वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है, और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया। उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं।
0: ओके।
1: तो उतना सा खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में, या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं, वहां फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने, बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो

उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है। बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला और दादा दादी, मतलब उनके सास ससुर, बुआ, पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, आते एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था जो

0: आ चुकी है, तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है. और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया. पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था. और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है.
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
0: सही बात.
1: क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
0: उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं.
1: जी
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणि बुरखा. तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी. ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था. और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर. ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं. मतलब मम्मी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए. प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा. तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो. तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया. और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल. तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया.
1: बहुत सही,
0: ठीक है,
1: बहुत ही सही.
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था. और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी. अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी, पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी. तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक. तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर.
1: वाह वाह, क्या प्रयोग.
0: इस तरह से वो हुआ. तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है. उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं प्ले के लिए. जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी.
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर. एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है. उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं.
0: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे. वो निर्देशक भी थे, राइट. सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छूमंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप. ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था. बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे. इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है,
1: कामयाबी.
0: काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था. तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा. उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे.

0: उस एक रोल के लिए उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई, बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
1: और वो भी पापा के निर्देशन में।
0: तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
1: हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है।
0: करेक्ट। तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा। पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट? तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
1: गजब।
0: इट वॉज इज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरडे जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेरडे थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
1: वाह।
0: ओके। और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो

0: समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी, तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के, तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था. आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी, तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था.
1: ओहो.
0: और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में.
1: हाँ जी.
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए, और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके. और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस. और
1: क्या प्यारी बात है. वाह, यहाँ भी गाने की जगह बन रही है, और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर.
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं.
1: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात. सुनते हैं ये गाना.

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल।
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी

0: और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अवचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
1: गजब।
0: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
1: वाह वाह,
0: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
1: किस इलाके में?
0: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो ऐसे उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
1: उसकी बात आगे करेंगे,
0: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे,
1: बिल्कुल
0: रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
1: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात यह हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो,

0: तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर. ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत. तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड.
1: बिल्कुल बिल्कुल. एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है. उसकी मिसाल है अर्धसत्य. हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया.
0: राइट.
1: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी.
0: नहीं थी
1: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए.
0: वो कैसे मिली, इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी
1: जी.
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे. तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले, दुबले पतले से ऐसे थे. तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त. तो आप करोगे, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो. मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा. इस तरह से उन्होंने वो किया था. तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त. जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त. और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजला लोकमान्य टिळक हा रामोशा सारखा दिसतो. रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई. तो इस तरह से वो दिखता है. तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी, ही वॉज वेरी वेल बिल्ट.
1: यस.
0: तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था. ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त. और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार, जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई. आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच.
1: बिल्कुल. राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए. और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया. वो क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है. 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहां पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में. अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था. और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो. ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी. तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
1: जो कसर रह गई है
0: वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा.
1: yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी. अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त. 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था. तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था. पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है.

0: 21 जून 2024 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस निमित्ते प्रसारित।
1: छेल्ला 12 वर्षथी अहीं विकासना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थनी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्षथी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व ने। 12 वर्ष विश्वासना विकासना जन कल्याणना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरानी, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकतानी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्यनी, अने गगनामता भारतना आत्मविश्वासनी। 12 वर्षनी आ यात्रा छे गुजरातमां अंत्योदय अने गरीब कल्याणनी, सेवा अने सुशासननी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जनना आत्मविश्वासनी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देशनू ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रह्यू छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नू पावर हाउस। आवो आ विकासना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वासना विकासना जन कल्याणना।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर

0: के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
0: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: મિત્રો, આ પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્રનું, અને હવે ફરી એકવાર સાંભળીએ વિવિધ ભારતીના કાર્યક્રમોનું સહપ્રસારણ અમારા મુંબઈ કેન્દ્ર પરથી।
4: પર યું હી કભી કભી ઉદાસીઓ કે બીચ હસ્તી હૈ, યે અભી કોન સા મૌસમ જગા ગયા ઉસકો, ગુલાબો ઇત્ર કી ખુશ્બુ સે વો મહકતી હૈ, દર્દ સે इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पकड़ती है।

नजारों में। हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरी अदाओं के दीवाने हैं। कभी काली घटा को ओढ़कर दिन में तू निकलती है, तो कभी झिल मिलाती हुई शब में तू चांदनी सी बिखरती है। वो तेरे पैरहन के अंदाज, वो तेरे हुस्न के जलवे, तेरे कदमों पर सिर झुकाकर चांद भी करता है तेरे सजदे। बेनूर सी है मेरी जिंदगी तेरे बिना, करता हूं मोहब्बत तुझसे मैं बेपनाह।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें। चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात के आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

ये सुना था मैंने, तेरी आंखों को पढ़ा जब, इस बात को माना मैंने, तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में जादू, तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महकता सा कंवल।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशां के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूं या चांद हो तुम हूबहू।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: એન્જિનિયરિંગમાં પાકું કરિયર બનાવવું છે તો ડિપ્લોમા બીઈ કે D2D માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે। KJ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી સાવલી।
3: KJIT સાવલી આપે છે 100% જોબ પ્લેસમેન્ટની ગેરંટી।
2: વિઝિટ અવર વેબસાઇટ kjit.org today।

0: once again on the Midland leg, played defensively forward by Spiti on the onside, no runs result. Now it'll be interesting to see how India really approach this innings, because the power play is going to be very important, and they would certainly want to have a good start with a very good power play and then build it on from there on, because South Africa is a very good batting side and they can really give it a good chase, a good total. Marizand Cup outside the off stump, flowing off drive, good stop there at mid off inside the 30 yard, and no runs result. So after a couple of the very first delivery, two dots here from Marizand Cup. And as I was saying, you know, South Africa will want to win over here. Remember, they lost to Australia and they lost by big margins. So if they lose again over here, they'll have a major problem in this tournament from here on. They've got Netherlands to play. They can beat them by a big margin, but Bangladesh are no pushovers, so it'll be very difficult for South Africa from there on. Once again, played on the onside for a single to the ball in the leg and middle stumps from Marizand Cup. And so it's so important, this game, that both the teams want to win and push forward for a place in the semi-final.
1: बात आपकी बिल्कुल ठीक है केके, क्योंकि ये मैच ऐसा मैच है जिसे हम आप क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो अपना स्थान सेमीफाइनल में पूरा करने के लिए बहुत करीबी करीबी पहुंच जाएगी। और स्मृति और शिफाली की इस जोड़ी से भारतीय टीम को बहुत उम्मीदें हैं। शिफाली वर्मा पहली बार सामना करती हुई मैरिजन कैप का, चार गेंदें अभी तक फेंकी गई हैं और इन चार गेंदों में भारत ने तीन रन बनाए हैं। मैरिजन कैप अपनी फील्ड को कुछ एडजस्ट करती हुई, बट क्योंकि एक बात बहुत जरूरी जो है कि ये जो ओपनिंग स्टैंड है हमारा भारतीय टीम का, इस पूरी भारतीय टीम का जो बेस है इस ओपनिंग स्टैंड से बनने वाला है।
0: Yeah, I mean, it'll be very important to see how Shefali goes about this. She likes to hit it over the top. Here's Marizand Cap into Shefali Verma. That's a good ball on the off and middle. And driven into the covers, a half push, half drive. And a good stop there by Laura Wolfar. But they get a couple for that. So Shefali Verma also, in the very first delivery, on her way to an India 5-0 loss. The first over, just the one delivery still to come from Marizand Cup. So controlled over here by Marizand Cup. Also interesting to see that five deliveries, Marizand Cup hasn't given the ball too much pace, because she knows that pace on the bat, and Shefali Verma will go after her if it's a length ball. Here is Marizand Cup into Shefali Verma on the pads. Once again, turn around the corner. That might well carry down to the boundary. The first four of the match coming up down to the square leg boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: और शेफाली वर्मा के बल्ले से ये चार रन जो निकलकर बाहर गया, और इस चौके के साथ इस मैच का पहला चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकला, और भारत ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बनाए हैं। और अच्छी शुरुआत, हालांकि जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी, और ये आखिरी गेंद सिर्फ लेग स्टंप को छोड़ती हुई और उसे हल्का सा दिशा भर दी शेफाली वर्मा ने, और गेंद सीमा रेखा को छोड़कर बाहर जाती हुई। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में भारत का स्कोर रहा 9 रन बिना किसी नुकसान पर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये जो वुमेन्स टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें जो पॉइंट टेबल है ए ग्रुप में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक 3 मैच खेल चुका है और तीन मैचों से 6 अंक अर्जित कर चुका है। भारत ने 2 मैच खेले, आज भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैच, तीसरा मैच वो खेल रहे हैं। बांग्लादेश ने 3 मैच खेले हैं, 4 अंक उन्होंने अर्जित किए। साउथ अफ्रीका का ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा मैच, और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स भी 3-3 मैच खेल चुके हैं। इस्माइल अपने नए ओवर के साथ सामना करती हुई स्मृति मांदना, अच्छी गेंद थी, कवर्स पर उसे पुश किया, फील्ड किया गया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन पे। 1.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 9 रन। स्मृति मांदना खेल रही है 3 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 5 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, और शेफाली वर्मा 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। अभी तक 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और भारतीय बल्लेबाजी की जो नींव है वो बननी शुरू होती हुई, और बहुत जरूरत है कि इस ओपनिंग साझेदारी से एक बड़ा स्कोर भारत को मिले। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद, और उसे पुश किया मिड ऑफ पर।

0: तक फेन को फील्ड किया जाता। तेजी से अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने और इस स्कोर के साथ स्मृति पहुंची चार के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत 10 रन बिना किसी नुकसान पर 1.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: Yes, it'll be now. This is an interesting contest that we'll have to see. Shabnim Ismail to Shefali Verma, because compared to Marizan Cup, Shabnim Ismail is giving more pace on the ball, and that's what Shefali Verma likes. Very first over for Shabnim Ismail. Also, she's also got all the experience behind her. Remember, brought out of retirement for this World Cup. Outside the off jump, and that's been driven, square driven. That's gone down to the square cover boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका
0: और ये शानदार चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे पुश भर गया। टाइमिंग इसमें अच्छी थी, हालांकि फील्डर के पास से ये गेंद निकलती हुई और ये चार रन उनके बल्ले से निकलते हुए और इन चार रनों के साथ शेफाली का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 10 के 10 पर। तीन गेंदें अभी उन्होंने खेली हैं और भारत 1.3 ओवर्स के बाद 14 के अपने स्कोर पर। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स लेग स्टंप के बाहर थी, हल्का सा उसे पुश किया और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने का और स्कोर पहुंचा इसके साथ 15 रन भारत का बिना किसी नुकसान पर। 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ। निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दूसरी इनिंग्स में जो पिच एक्सपर्ट्स की थी उनकी राय थी कि गेंद स्पिन लेगी और भारत ने अपने इस खेमे में तीन स्पिनर्स को चुना हुआ है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप के बाहर और से पुश भर किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मृति मांदना के बल्ले से ये कवर बाउंड्री के बाहर खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को सिर्फ पुश भर किया एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से अच्छी टाइमिंग अच्छी प्लेसमेंट और उनके बल्ले से निकला हुआ यह पहला चौका। स्मृति अदानी मांदना पहुंची 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर। 7 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं और 1.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 19 पर। एक अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों को। राइट आर्म ओवर द स्टंप लेग स्टंप के बाहर और ये चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और उसे हल्का सा सिर्फ दिशा दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर और इस चौका

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप

0: भी देखते हैं 12 वर्षों को बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
1: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे, हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली, और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी।
0: एब्सोल्युटली। सो मिस्टर चनॉय, Dr. Sharma has extensively explained that the ease of doing business has become the mantra for the push that has come to the manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
0: Yes.
2: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
0: Mm-hmm.
2: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
0: Yes.
2: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you're doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it. Mm-hmm. This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it

0: mind. They want to move forward to become entrepreneur, to provide the jobs to the other people. So this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
0: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses, and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India. Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business, that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
0: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence.
1: Yes.
0: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned, that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. Like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: Absolutely. So Mr. Chinoy, jaisa ki abhi Dr. Sharma ne kaha ki hum, aur aapne bhi kaha ki itne hum aapadaon se guzre, itni mushkil situations jo international level par hui, chahe wo pandemic ho, chahe ye geopolitical conflicts ho, but phir bhi hamare aarthik मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सुरेश जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है.
1: जी.
2: अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी, जी जी,
2: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल

0: का जो ट्रिनिटी है,
1: जी
0: उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट।
1: जी
0: ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था।
1: जी
0: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो।
1: हाँ
0: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में। और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो

0: नौकरी करो।
1: हाँ
0: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के।
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल। आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेज और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी। और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल

0: एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई हैं लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं एमएसएमईज के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
1: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है। जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है, और ओएनडीसी प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप भी एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ जीडीपी होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
0: प्रोडक्शन
1: जिसमें
0: लिंक्ड इंसेंटिव।
1: जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद, कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स हैं और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को, के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इंपैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
0: जी,
1: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमईस है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
0: ओके, अनदर पॉइंट मिस्टर चिनॉय विच आई वुड लाइक योर यू नो व्यू ऑन दैट लॉजिस्टिक्स, यू नो पीएम गति शक्ति, वेयर दे हैव टेकन अ मल्टी मॉडल अप्रोच टू फिजिकल कनेक्टिविटी, देन देयर इज लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, यू नो द वे द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड वेयर यू कैन जस्ट ट्रैक रियल टाइम कार्गो, और दे आर सो मेनी रिफॉर्म्स फॉर फास्टर कस्टम क्लियरेंसेज एंड स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट सपोर्ट। हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज फॉर क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, बोथ

0: time for any young person or even a person who
1: of
0: is
1: any age group,
0: age group,
1: yes,
0: to actually explore setting up a business. The domestic ecosystem to promote entrepreneurship has never been better. Some people may say some more changes are going to have required, but this is always work in progress. And the interesting part of this whole system is that the government is willing to listen to what changes need to be made. If you give a suggestion, it is looked at, it may be accepted, but the whole idea here is ease of doing business and ease of living.
1: Absolutely. In fact, we are totally running out of time. Would you like to say something, Dr. Sharma?
2: Yes, Sonuji. I would like to mention one more promising area, which is the artificial intelligence, which is promoting and supporting the businesses' trajectory and making them more and more easier. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं.
1: Yes.
2: हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम. तो
1: ये एक ब्रेक थ्रू मेजरली टू
2: यस जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव and competitive in the not only in the domestic economy but at the global economic system.
1: Dr. Sharma, Mr. Chinoy, thank you so much for coming.
3: Thank you.
4: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसवी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
3: तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 8.24 की औसत से ये रन बनते हुए और भारत ने पिछली 12 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं स्कोर करी है, इसलिए ये जो स्कोर है स्कोर रेट है वो नीचे आता हुआ 10 से 9 से अब 8.24 पर. और आखिरी विकेट जो गिरी थी 67 के योग पर वो थी यशिका भाटिया की. और शबनम इस्माइल अपना पूरा का पूरा जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो झोंकती हुई अपनी गेंदबाजी पर अपने तीसरे ओवर के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. ऑफ स्टंप पर गेंद उसे हल्का सा पुश किया और जब तक खुद वापस दौड़कर पहुंचती हुई शबनम इस्माइल बल्लेबाजों के पास मुस्तैदी से आंखों ही आंखों में इशारा किया हरमनप्रीत ने और जमीमा रॉड्रिक्स ने अपने अपने छोर बदले और भारत का स्कोर 8.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद पहुंचता हुआ 71 रन तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर. बहुत ही एक मुस्तैदी से चुराया हुआ ये रन आंखों से इशारा किया और फिर अपने अपने छोर बदले. हालांकि ये कॉल जमीमा रॉड्रिक्स की थी क्योंकि सामने से वो देख रही थी बल्लेबाज को और उस कॉल को हरमनप्रीत ने हां बोली और दोनों ने अपने अपने छोर बदले. भारत 71 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 8.4 ओवर की समाप्ति के बाद और शबनम इस्माइल अपने ओवर की पांचवी गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे हल्का सा पुश किया स्केयर लेग पर खड़े फील्डर ने भागकर इस गेंद को पकड़ा और पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर बदलने के लिए और स्कोर इस एक रन के साथ 72 पर पहुंचा. 8.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 72 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर. हरमनप्रीत कौर खेल रही हैं 2 के अपने व्यक्तिगत योग पर. जमीमा रॉड्रिक्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं. और अगर आप बॉलिंग को देखें तो तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एक ही स्पीड के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं ताकि बल्लेबाज को ये सोचने के लिए मजबूर किया जाए. अगली गेंद ऑफ स्टंप लेग स्टंप पर थी और उसे हल्की सी दिशा दी स्क्वेयर लेग की तरफ. गेंद को फील्ड किया गया लेकिन पर्याप्त समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के बाद और इस एक रन से स्कोर पहुंचा 73 पर तीन खिलाड़ी के नुकसान पर. 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 8.11 की औसत से अभी जो स्कोर बन रहा है जिसमें हरमनप्रीत के 3 रन हैं जमीमा रॉड्रिक्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं. जो 3 विकेट्स गिनी हैं अभी तक वो स्मृति मांदना 17 के अपने व्यक्तिगत योग पर. शिफाली वर्मा 31 की अपनी तेज तरार पारी को समाप्त किया था उन्होंने और यशिका भाटिया जो अपनी टाइमिंग से आज अच्छी बल्लेबाजी दिखा रही थी 15 के योग पर LBW करार दी गई.
5: वन ऑफ द रीजन व्हाई इंडिया इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट वी

0: શ્રોતા મિત્રો, હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ હરિયાળું ગુજરાત. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. થોડી જ વારમાં પુનઃ જોડાઈએ દિલ્હી કેન્દ્ર સાથે. ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ માન્ચેસ્ટર ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી આઈસીસી મહિલા T20 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2026ના જીવંત પ્રસારણ માટે.
1: मैदान पर खड़े फील्डर के सीधा हाथों में बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान के, और 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर पहुंचा है 138 रन 6 विकेट के नुकसान पर. अभी अभी जो बल्लेबाज आउट होकर गई हैं, दीप्ति शर्मा, एक अच्छा उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था. 29 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई थी. 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया था आउट होने से पहले, और इन 29 रनों में 3 चौके उनके बल्ले से निकले थी. दीप्ति शर्मा कॉट मार्जिन कैप बोल मलाबा 29 रन. ऋचा घोष खेल रही हैं 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर. हालांकि उनके बल्ले से अभी तक कोई जोरदार स्ट्रोक नहीं आया जिसके लिए वो जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, और अगले 2 ओवर में वो स्ट्रोक्स क्या हमें देखने को मिलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा. खाका अपने ओवर के साथ तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर.
2: हाय बुग्गा खाका, स्टार्ट्स अ फ्रेश ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट एंड राइट टू द ब्लॉक होल डग आउट बाय अरुंधति रेड्डी देयर फॉर अ सिंगल. बट दिस इज व्हाट इंडिया वांट, दे वांट ऋचा घोष ऑन एज मच स्ट्राइक एज पॉसिबल. शी इज द वन दैट कैन डू डैमेज to the South African bowling over here. Kaka, so far 1-18 in 2 overs prior to this one. And Richa Ghosh now. Ayabonga Kaka over the wicket to Richa Ghosh. Once again goes for the block hole, and that's been driven down to long off for a single. So just the 2 singles so far. Good from South Africa's perspective. 18.2 overs. They bowled very disciplined manner right throughout. Just the 1 wide. And we have only 10 deliveries remaining in this innings of 20 overs. That tells you a story in itself. No balls, no wides. Here's Ayabonga Kaka this time. Reach a goal to Arundhati Reddy, makes room for that, but Kaka thinks well, follows the batter on that occasion, bowls right on the pads, and Arundhati Reddy can do no more than dig it out for another single. Gets the nod from her captain, does Kaka. There, Wolfart telling Kaka, well bowled, because she followed the batter and didn't give any room to Reddy, who was trying to go inside out on that one. Here's Ayabonga Kaka to Richa Ghosh, who comes down the wicket, and she once again follows. Has she found the gap? A lovely stop there, right on the mid-wicket boundary. But I just reckon they'll probably get a couple for that. Lovely fielding once again by the South Africans. That is Chloe Tryon there, who dived right across and prevented what could have been a boundary. So another 2 saved over there. They would have saved at least about 8 or 10 runs by good fielding, around 8 for sure in this innings, which now has got another 8 deliveries left. Yes, Ayabonga Kaka this time, Richa Ghosh once again in the path. This will go down to the square leg boundary for 4. Bad ball. Third round of ball.
3: Abhaka Choka.
1: And Richa Ghosh ke balle se ye nikla hua choka, जिससे स्कोर भारत का पहुंचा है 147 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर. और एक अच्छा

0: शॉट था, उसे सिर्फ दिशा भर दी और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। बहुत देर के बाद ये एक चौका भारतीय बल्लेबाजों के हाथ से आया है। हालांकि कोशिश पूरी करी गई थी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग पर लेग पर खड़ी फील्डर के द्वारा, लेकिन नाकामयाब रही और भारत का स्कोर पहुंचा 147 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 18.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद। लेग स्टंप के बाहर गेंद और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर वाइड के रूप में चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: This is what the pressure of a boundary can do even to an experienced campaigner like Kaka, and also the initial movement of Richa Ghosh trying to give herself a little bit of room, Kaka trying to follow the batter, and on this occasion Richa Ghosh not moving as much and a bit premeditated. Kaka over there thinking that she'd probably move more to the leg side, and that's why it ended up being four wides. Costly runs. Kaka this time to Richa Ghosh, this time tries to hit the tram lines wide of the off stump, gets it perfect. That's a dot ball, but an expensive over there from Ayobuka Kaka. 13 came of that, and the end of 19 overs. India 152 for 6. We'll have to wait and watch whom the ball is given to for the last over. Definitely, I believe it will be Marizan Kapp, because she's bowled so well. The last over will be bowled with Marizan Kapp.
0: भारत का स्कोर इस समय 152 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। भारत ने पहले 50 रन बनाए 26 गेंदों का सामना करते हुए, दूसरे 50 रन यानी कि 51 से 100 के बीच में 51 बॉलों में उन्होंने ये 50 रन अपने बनाए और 101 से 150 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने 30 गेंदों का इस्तेमाल किया तीसरे 50 रन को पार करने के लिए। और भारत इस समय 19 ओवर की समाप्ति के बाद 152 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ऋचा घोष खेल रही है 15 रन के अपने व्यक्तिगत योग पर और अरुंधति खेल रही है 3 रन के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत का रन रेट है 8 और मैरिजन कैंप अपने आखिरी ओवर के साथ, पहले 3 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए थे 1 खिलाड़ी के नुकसान पर और राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, लेकिन बॉलिंग मार्क पर आकर शायद कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई है, कुछ दिक्कत उन्हें महसूस हुई है, इसलिए वो वापस दोबारा से अपने बॉलिंग मार्क पर जाती हुई। मैरिजोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए, शबनम इस्माइल ने 4 ओवर में 28 रन, ट्रेवन ने 2 ओवर में 23 रन, मिलाबा ने 4 ओवर में 33 रन, आयमोंगा खाका ने 4 ओवर में 31 रन और नदीन डिक्लार्क ने 2 ओवर में 16। अगली गेंद और उसे खेला गया है डीप कवर्स की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बल्लेबाजों ने चुराया और इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 153 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ग्रुप ए का ये जो अहम मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने अभी तक 153 रन अर्जित किए हैं 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ऋचा घोष अब सामना करती हुई मैरिजन कैप के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स और उसे उठाकर मारने की कोशिश करी, लेकिन एक फिर से आसान सा कैच शॉट फील्डर ने, जो लॉन्ग लेग पर शॉर्ट फाइन लेग पर जो फील्डर था उसके हाथों में बल्ले ने गेंद का बाहरी किनारा लिया गेंद ने और सीधा चढ़कर फील्डर के हाथों में बिना किसी गलती से इस कैच को लपका और भारत को अगला झटका मिला ऋचा घोष के रूप में। हालांकि भारत को बहुत उम्मीद थी कि आखिरी ओवर में ऋचा घोष के बल्ले से कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। कॉट खाका बोल्ड कैप ऋचा घोष 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर वापस जाती हुई, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया और भारत एक इस विकेट के साथ 153 पर 7 खिलाड़ी आउट हुए। भारत के ऋचा घोष अभी अभी आउट होकर वापस जाती हुई 15 के व्यक्तिगत योग पर। 19.2 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर पहुंचा हुआ 153 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर।
2: Once again the slow ball doing the trick over there for me, and that's what I've been saying right throughout this innings. They've not given any pace on the ball at all, and Marizan Kapp with all the experience, and what Richa Ghosh did there was went through with this stroke. The ball came in later, took the top edge and ballooned up to the field at short fine leg, and that was easily taken by Kaka. As here is Kapp this time, and that's been lofted. Has she got the distance? It'll go a few bounces, will be cut off at wide long on, just the one. So this is a good final over by Marizan Kapp. A couple taken over there actually by there'll be the

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्री हिट 20 में। मेरा नाम है मुनीश जौली, मेरे साथ मुदिता है और हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पे मौजूद हैं। वैशाली माथुर, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र सिंह, बीसीसीआई से क्वालिफाइड कोच, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्थरा गणेशन। और आप जानते ही हैं कि 159 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया है साउथ अफ्रीका को। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बैटल ऑफ वॉरियर्स है, वो वॉरियर जो 50 ओवर का जो फॉर्मेट था उस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले थे, लेकिन ये मुकाबला कुछ वैसा ही लग रहा है। सबसे पहले वैशाली, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पे खुश हैं स्कोर के साथ?
1: थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं लैक हो गई है, एंड कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसके बैट से कंटिन्यूस स्कोर आया हो।
0: ओके,
1: एंड उसके साथ अगर देखा जाए इस मैच की बैटिंग लाइनअप के बारे में तो मोस्टली आउट एक ही वे में हुए हैं, एंड उस पे हमें फोकस करना चाहिए।
0: वो भी समझा दीजिए किस वे में, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा मदद मिल जाएगी।
1: अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना चाहिए था, जो हम उसको कट करके खेल रहे थे वो नहीं करना था हमें। हम हमेशा लेग की साइड पे क्यों रन देखने की कोशिश करते हैं, जब हम कवर्स के ऊपर से भी हम इतना जिगरा रखते हैं कि मार सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते थे। उसको माइंड, जो भी बैटर आ रहा था, जैमिमा भी आई, तो उनको ये देखना चाहिए था कि बैटर कैसे आउट होके गया कि वो गलती हम भी ना करें।
0: एक और शख्स हमारे साथ यहाँ है रविंदर जी, लेकिन एक मोहतरमा है जिनकी आवाज बड़ी मीठी है, कोयल सी उनकी बोली है, आपके चेहरे में स्माइल कम होगी, पर 159 अच्छा स्कोर होता मुदिता
2: जी, लेकिन शायद उम्मीद से कुछ कम रह गया जो हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले उम्मीद जताई थी। रविंदर, जो हम पहले बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की, कि अगर उन पर प्रेशर आया तो क्या वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आज के प्रदर्शन को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए, स्टार्ट तो अच्छा ही था, तीन पहले जो स्मृति आउट हुई, 3 में 30 थे, 6 में 54 रन थे, स्टार्ट में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जब विकेट जो गई हैं

0: सबसे बड़ी बात है कि विकेट थोड़ा स्लो था, इतना विकेट पे जो स्लो था, उनके शॉट्स पे जो रिवर्स जो उल्टे खेल रहे थे, रिवर्स वगैरह कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा पेस चाहिए आपको बॉल के अंदर। पेस होगा तभी आप उसको शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से मार सकते हैं, लेकिन अगर आप में पेस नहीं है, फ्लाइटेड बॉल है, उनको आप मारोगे तो फाइन लेग पे कैच ही जाएगा। सबसे बड़ी गलती करी स्मृति ने, जो इतना बढ़िया बैटिंग करते करते तीन ओवर में ये 30 रन का स्टार्ट था, उसके बाद ये गलत शॉट खेला। 160 रन इस विकेट में मुझे कम लग रहे हैं, 180 का हमारा जो था कि 180 तो बनने चाहिए, लेकिन अब डिपेंड, विकेट स्लो है, स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो ये मैच हो सकता है कि अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करें तभी हमारे तभी मैच में कुछ फाइट।
1: सो कमिंग टू यू उत्तरा, नो क्रेज टेकन अवे फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स मार्जिन कैप 2 for 27 and 4, शबनम इस्माइल 2 for 22 and 4, बट अपार्ट फ्रॉम दैट समथिंग व्हिच आई फील डिड द डैमेज फॉर द इंडियन इनिंग्स वर द 40 डॉट बॉल्स, ऑलमोस्ट 40 डॉट बॉल्स दैट द इंडियंस प्लेड।
2: आई थिंक द डॉट बॉल्स हैड अ ड्यूअल इफेक्ट, one of course they kept the scoring low, and two, those dot balls were the ones that forced Indian players to go for shots which otherwise perhaps they would not have done. Vaishali said ke there were no partnerships, and that was also because every couple of dot balls or every three or four dot balls meant they tried to go for a big shot without realizing that just swinging your bat does not bring you runs, especially when you're up against players like Cap and Ismail, who have a ton of experience between them. They know exactly what pace to bowl and when to hold themselves back. It's not always going all out that pays out. And that is where that's why I said that.
3: Namaskar. Akashvani se Samachar Sandhya ke saath main Vishal Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में
4: शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
5: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
4: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
5: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा

0: लगी हैं और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: डेलीलॉ ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज

0: जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने

FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बोला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 47.1 overs. And in women's cricket, India were 19 for no loss in 4 overs against South Africa in a Group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester when reports last came in. India won the toss and opted to bat first. This match marked a major milestone for Captain Harmanpreet Kaur, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 internationals. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a 7-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, Prabhat, and other dignitaries. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence, commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, 7 people killed, over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and Sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lifts FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A Series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
1: बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ रन रेट बहुत प्रेशर क्रिएट करता है इस अहम मैच में 4.69 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर अब 9.14 पर पहुंच गया है यानी कि आने वाले ओवर्स में हर बल्लेबाज को तेज बल्लेबाजी करनी होगी और इस तेज बल्लेबाजी को रोकने के लिए जो रणनीति भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनाई थी उसमें अभी तक उनको पूरी कामयाबी मिलती हुई 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया शेफाली वर्मा नंदनी शर्मा अरुंधति रेड्डी और श्रीचरणी जिन्होंने अभी अभी एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई लॉरा वॉल्फर्ट के रूप में अभी अभी उनको कॉटन बोल्ड किया 20 रन बनाए लॉरा वॉल्फर्ट ने अपने इस बल्लेबाजी में और वापस जाती हुई तस्मीन ब्रिट्स खेल रही है 5 के अपने व्यक्तिगत योग पर 11 गेंदे वो खेल चुकी हैं इन 5 रनों के लिए और 25 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन का पीछा करती हुई साउथ अफ्रीका की टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में ये एक अहम मैच ग्रुप ए का खेला जा रहा है हालांकि ग्रुप बी की जहां तक हम बात करें तो लगभग 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं आज वेस्टइंडीज ने एक अहम मैच जीता श्रीलंका के खिलाफ और उन्होंने भी अपने 6 अंक अर्जित कर लिए इससे पहले इंग्लैंड 6 अंक अर्जित करके सूची में सबसे ऊपर है और ग्रुप बी जो अभी तक पूरा खुला हुआ है उसका एक आज बहुत बड़ा मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर जिसमें 159 रन का पीछा कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम और ट्रैक्शन अभी टीम पर आती हुई
2: डक्सन देन दे नीड अ बिग पार्टनरशिप Tasman Briss hasn't really got into the normal groove that she does, but give full credit to the Indian bowlers. Sri Chandni round the wicket. Once again on the leg and middle. Gentle roll of the wrists from Dirksen. And on the onside, no runs result. Now Sri Chandni bowls wicket to wicket, doesn't give the ball much air, and really also changes the line and length of every delivery. The next one is well tossed up and she's bowled! Dirksen is clean bowled! A brilliant delivery, as I said, well tossed up. Dirksen's eyes lit up. She said, let me go after it. Tonk it over. Completely missed. And that's wicket number 2 for South Africa.
1: ये होता है जी जाल में फंसाना इसी बोलते हैं मछली को जाल में फंसाना फ्लाइटेड गेंद और उठाकर मारने की कोशिश करी गेंद में स्पिन आई जिसके लिए हरमनप्रीत ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय जो लिया था वो बिल्कुल सामने झलकता हुआ और बॉल ने स्पिन किया और ये एक बड़ी मछली एंड्री ड्रैक्सन के रूप में फंसी इस स्पिन गेंदबाजी के श्रीचरणी की और शून्य पर आउट होकर वापस जाती हुई और पावर प्ले में ये दूसरी विकेट अर्जित करी है श्रीचरणी ने अपने दूसरे ही ओवर में 2 बल्लेबाज जो अभी तक आउट होकर वापस गए हैं वॉल्फर्ट जो

0: चढ़ने की शिकार बनी, खुद ही उन्होंने अपनी गेंद पर उसे कैच किया और एंड्री ड्रक्सन जो कि शून्य पर क्लीन बोल्ड बोल्ड बाय श्री चरनी और एक बड़ी मछली को फिर से फंसाया अपने जाल में.
1: गिव द बॉल मोर एयर अलाउड टू गिव द सर्फेस द बॉल टर्न्स फंडामेंटल्स वी सॉ दैट इन दैट डिलीवरी. श्री चरनी गिव द बॉल एयर एंड्री डर्कसन्स आईज लिट अप. She said, let me go off it, talk it over the bowler's head. The ball gripped the surface, turned and hit the top of off. Shri Chandni, this time once again giving the ball more air to the new batsman Marizan Kup, played back along the wicket. Excellent delivery in the previous one. What a brilliant, it's a dream ball of a left-arm orthodox bowler. Two wickets, no runs so far in this over. Shri Chandni to Marizan Kup. Played straight to mid off. A maiden double wicket by Shri Chandni there. What an over. And the power play ends. South Africa struggling 25 for 2. Now need to score at close to 9.6 from here on. Chasing 159.
0: Bharat aur South Africa ke darmiyan ye jo ahem match khela ja raha Ultra Fit par. पावर प्ले में भारत ने 59 रन बनाए थे दो खिलाड़ी के नुकसान पर, यानी कि पहले 6 ओवर में भारत ने 59 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका ने पहले अपने पावर प्ले में यानी कि पहले 6 ओवर्स में 25 रन बनाए दो विकेट नुकसान पर. भारत ने 13 डॉट बॉल्स खेली थी और साउथ अफ्रीका ने इस दौरान पहले पावर अपने पावर प्ले में 6 ओवर्स में 23 डॉट बॉल्स खेली हैं. इसका मतलब यह है कि जो भारतीय गेंदबाज हैं, खासतौर पर जो भारतीय स्पिनर हैं, जिसकी वजह से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सफल होता दिखाई दे रहा है. 6 ओवर में 25 रन दो खिलाड़ी नुकसान और 23 डॉट बॉल्स.
1: वन मोर चेंज द डिबिडान प्रेमा रावत नाउ outside the leg stump and that's been pulled away around the corner. Will be cut off by Arundhati Reddy. A diving effort and they're through for two. Brits goes up to 7 with that. 132 needed from 83 deliveries. This is getting to be tougher. Required run rate around 9.5 and they've lost Laura Wolfart on so much, on whom so much depends, and also the wicket of Dirksen. Prema Rawat once again outside the leg stump. That will swept around the corner. Ricochets. A diving effort there by Smriti Mandhana. And they go through for one. They go through for two. And also good running between the wickets by the South Africans. Getting three. They convert two into three over there. So that takes South Africa into their 30s now. 30 for two. And Tasman Brits is 10. Tasman Brits realizes now that she has to be the aggressor of the two, trying to take the attack to the debutant, knowing that there'll be nerves for Prema Rawat, and this is a good opportunity to get the up the scoring rate, if not boundaries, at least get twos and convert twos to threes. 5 runs in the first two deliveries of Prema Rawat. 129 needed for South Africa of 82 deliveries from here on. So the run rate, as I said, is 9.44. The next one is turned round the corner for a single. So 6 runs in the first 3 deliveries. And this is good thinking by the Indian captain, Harmanpreet Kaur. Rotating her bowlers. We've already seen 5 bowlers in operation so far. And this is just the 7th over.
0: साउथ अफ्रीका का स्कोर 31 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर. प्रेमा अपने ओवर की अगली गेंद और हल्का सा उसे पुश भर किया ब्रिट्स ने. इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर. आउट होने वाले प्लेयर वॉल्फार्ट 20 रन बनाकर आउट हुई और डर्कसन ने बगैर स्कोरर्स को तंग किए हुए, जैसे कि हमारे रावत साहब हमें बता रहे हैं कि ये स्कोर अब रन रेट पहुंच चुका है 9.53 का. अगली गेंद और उसे कट करने की कोशिश, लेकिन स्क्वायर पॉइंट पर खड़ी फील्डर दीप्ति शर्मा ने उसे मुस्तैदी से फील्ड किया. वापस भेजा गया गेंद को प्रेमा रावत के हाथ में. प्रेमा रावत अपने ओवर की आखिरी गेंद. ऑफ साइड फील्ड, एक पैक फील्ड इस समय. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. अच्छी गेंद उठाकर मारने की कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं हुआ और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर

0: था 32 खेल पर दो। साउथ अफ्रीका 7 ओवर की समाप्ति के बाद 13 ओवर जो बचे हुए हैं उन 13 ओवर्स में 127 और रन चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका को 9.77 की औसत से। अभी जो स्कोर बन रहे हैं वो 4.57 की औसत से बन रहे हैं। भारत ने अभी तक 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शेफाली वर्मा ने 2 ओवर किए हैं, नंदनी शर्मा ने 1, अरुंधति रेड्डी ने भी 1 ओवर किया है, प्रेमा रावत ने अपना पहला ओवर अभी भी समाप्त किया है और श्री चन्नी ने अपने 2 ओवर में 1 मेडन 2 रन और 2 बहुमूल्य विकेट्स अपनी टीम के लिए अर्जित की हैं। वॉलफॉर्ड को 20 पर कॉटन बोल्ड किया और ड्रेक्सन को अपनी ही गेंद में क्लीन बोल्ड किया
1: 32 for 2 एंड द एक्सपीरियंस दीप्ति शर्मा कम्स इन। ऑल द ड्रामा हैज हैपेंड बिफोर दीप्ति शर्मा कम्स इन, दैट टेल्स यू। And the reverse sweep comes out from Tasman Brits. That will carry down to the boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका
0: और 14 गेंदों के बाद ब्रिट्स के बल्ले से ये चौका निकला है साउथ अफ्रीका की टीम के लिए और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 36 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 7.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद। दीप्ति शर्मा छठे बॉलर के रूप में कप्तान हरमनप्रीत ने उनका इस्तेमाल किया। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ब्रिट्स तैयार हैं गेंदबाजी का सामना करने के लिए और उसे हल्का सा पुश किया और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने के लिए। हालांकि डायरेक्ट हिट लगी, हाथ उठाया जरूर गया था लेकिन स्क्वेयर लेग पर खड़े अंपायर ने उसे नकार दिया क्योंकि बल्लेबाज अपनी छोर पर अपनी क्रीज पर पहुंच चुके थे।
1: शॉर्ट एंड लेंथ दैट वाज एंड दैट वाज पुल्ड अवे डाउन टू शॉर्ट फाइन लेग। हाफ हार्टेड वाज रिचर घोष एज अ थ्रो केम इन टू द स्ट्राइकर्स एंड डायरेक्ट हिट बट नो हार्म फॉर साउथ अफ्रीका। 5 कमिंग ऑफ द फर्स्ट 2 डिलीवरीज। दीप्ति शर्मा वंस अगेन डाउन द लेग साइड टू बारिजान कप दिस टाइम who wants to play the sweep once again. So slow was the ball off the wicket that Kapp almost goes through with it and then the ball comes after that. In fact, takes the reverse of the bat on its way back. Dipti Sharma this time, Kapp, and once again that's miscued. Will go down to long off but not exactly as Kapp would have probably wanted to. The ball was in the air for a fair length of time.
0: मार्जन कैप ने हालांकि इसको उठाकर मारने की कोशिश करी थी लेकिन पूरी तरह नाकामयाब रही। गेंद दीप्ति शर्मा से थोड़ी सी दूर थी इसलिए वो उसे लपक नहीं पाई अपने अगले बॉल के साथ। खुद फील्ड किया, अच्छी गेंद बिल्कुल सीधी ताकि बैट्समैन को मौका ही ना मिल सके और इस समय साउथ अफ्रीका 38 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 7.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद अपने ओवर की आखिरी गेंद और उसे उठाकर मारने की कोशिश की गई। जी हां, छका दिया उन्होंने फील्डर को। हालांकि कोशिश पूरी करी गई थी लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकलकर पीछे जाती हुई और पर्याप्त समय था 2 रन अपने बल्ले के साथ अपनी टीम के लिए जोड़ने का। ब्रिट्स को ब्रिट्स पहुंची 18 पर, कैप खेल रही हैं 2 पर और साउथ अफ्रीका 8 ओवर्स की समाप्ति पर 40 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 5 रन प्रति ओवर की औसत से गेंद बल्लेबाजी हो रही है और 9.92 रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर पहुंचता हुआ।
1: यह साउथ अफ्रीका क्लियरली रियलाइजिंग दैट दे नीड टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज वी सॉ ट्वाइस एन अटेम्प्ट इन दैट ओवर ऑफ दीप्ति शर्मा to go for the reverse sweep. The required run rate is 9.92, which means that almost 10 and over. So even if they score at a 6 or 7 and over, this run rate will keep creeping up. And when it goes beyond 12 and over, it gets to be very, very difficult, even if you have some big batters. So South Africa from here on will certainly want to ensure they don't keep the run rate going up too much. The next first ball of a fresh over from Arundhati Reddy. A run that off stump just a shade outside off played into the covers and a dot ball once again. This is excellent thinking by Harmanpreet Kaur, rotating the bowlers beautifully, realizing that South Africa under pressure, now bringing in Arundhati Reddy by way of pace.
0: Arundhati Reddy ne apna pehla over mein 9 run diye the aur apne dusre over

0: साथ अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। पहली ओवर डॉट बॉल थी और दूसरी गेंद जो थी उसमें एक रन चुराया, बॉल को लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया गया और कैप के स्कोर पहुंचा 3 पर और ब्रिट्स खेल रही हैं 18 पर। एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही हैं दोनों बल्लेबाज, काफी एक्सपीरियंस है दोनों के पास और साउथ अफ्रीका की नजरें इन दोनों बल्लेबाजों पे होंगी ताकि इस गेम को, इस पार्टनरशिप को कुछ लंबा किया जाए।
1: Arun is ready to test and press from close to the stumps outside the off stump. Driven into the covers, a little bit of a ricochet gives the

0: of 69 deliveries. The equation is getting to be tougher now, close to 10.2 the required run rate for South Africa, as here is Arundhati Reddy. Converted that into a full toss, drilled down to wide long on. They go through for one, want a single, which is not there really. And they have to be content with just a single. Prema Rawat, the debutant, the fielder on that occasion. 116 needed from 68 deliveries. Now the last delivery from Arundhati Reddy, slower through the end, just 97 kilometers per hour, giving no pace on the ball at all to the batters. Here is Arundhati Reddy into Tasman Bint, this time short in length, and just a one-ball result that's played on the onside. They want a single, which is not there.
1: अभी तक इस ओवर में चार सिंगल्स आए हैं और श्री चन्नी ने जो अपने पहले दो ओवर किए थे उन्होंने दो रन देके दो विकेट्स जो अर्जित करी थी उसका प्रेशर अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर दिखती हुई है। कैप ने अभी तक 10 रन चार रन बनाए हैं 10 गेंदे खेलने के बाद और ब्रिट्स 20 रन पर खेल रही है अगली बॉल और मारने की कोशिश लेकिन फिर नाकामयाब रही। स्क्वेयर लेग के फील्डर के पास गेंद पहुंची, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय अपने अपने छोर बदलने का। ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है साउथ अफ्रीका का 45 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर और बाकी जो 11 ओवर यानी कि 66 गेंदें बची हैं उन पर 114 रन उनको चाहिए 10.38 की औसत से।
0: 10.36, 10.4 the required run rate. The last wicket fell when the score was 25. So these two have added 45 for the third wicket. So this is the biggest partnership so far. They've got to lick in these two, Kapp and Tasman Blitz. But they can't wait for too long before upping the ante. It's only 10.4 now. So every over where you score less than 10 runs and over is going to increase that and take it to 11, 12 and 13. First ball of a fresh over from Prema Rawat. That's played over the infield on the offside down to the extra cover boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: मैरिजन कप के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ प्रेमा का ये गेंद था, थोड़ा सा फ्लाइटेड जरूर था लेकिन इनसाइड आउट हुई और उसे कवर बाउंड्री के ऊपर से उन्होंने चार रन के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इसीलिए इनका शुमार वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं उनमें किया जाता है, गेंदबाजी के रूप में भी और बल्लेबाजी के भी ये दोनों में सक्षम है और इसका आज बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी साउथ अफ्रीका की टीम को कि मैरिजन कैप किस अंदाज में और कितनी देर तक बल्लेबाजी करती हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे उठाकर मारा है चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: अंपायर की तरफ से इशारा, एज यू कैन सी एट द बाउंड्री एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग एंड इट वाज एयरबोर्न फॉर अ फेयर लेंथ ऑफ टाइम एंड मैग्निफिसेंट अटेम्प्ट देयर बट जस्ट इल्यूडिंग ओ दैट जस्ट टुक द फिंगर टिप्स and went over the boundary for a six. But one must give full credit for the attempt that was made on the square leg boundary over there. So, but from South Africa's perspective, 10 runs in the first two overs. And this is what we were discussing. They'll probably go after the debutant in this particular over, Prema Rawat. Here is, that's once again down the leg side. And she says, was it that a wide? It is a wide.
1: और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 56 पर 2.92 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत ने अपने पहले 50 रन बनाए थे 26 गेंदों का सामना करते हुए और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले रन बनाए 56 गेंदों का सामना करते हुए भारत साउथ अफ्रीका ने अपने 50 रन बनाए और अगली गेंद को डीप कवर्स की तरफ पुश किया गया। बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन चुराने का और इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें हुई हैं और इसमें एक वाइड है 57 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। 63 बॉलों में 102 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस रन चेज को पूरा करने के लिए। अगली गेंद आगे निकलकर मारने की कोशिश लेकिन प्रेमा ने खुद फॉलो किया बैट्समैन को और मजबूर किया कि उसे रक्षात्मक तरीके से खेला जाए और खुद गेंद को फील्ड किया।
0: 32 of 25 deliveries this partnership, so they're getting into a groove, a few overs like this and you know these two have the ability. Here's the last delivery of Prema Rawat, just a trifle short.

0: that's been pulled away down to mid-wicket, halfway down to the boundary, and before the return can come, they're through for a single. And the three boundary riders are deep, square leg, deep, mid-wicket and long on, or on the onside. And should there be anything short, the batters will try to pierce it through that gap, those two gaps that are there. As here is Prema Rawat, the last time in this over, wide of the off stump, waits for it. Dasbarizan cap steers it down to the fielder inside the 30 yard. That is Deepthi Sharma, direct hit. Richard Ghosh goes up. Will the umpire refer it? And she says, no, I'm quite happy. And this over has cost India 16 runs. And at the end of 10 overs, halfway mark, South Africa chasing 159. 59 for 2, 100 needed in the remaining 10.
1: 10 ओवर में 100 रन चाहिए, यानी कि 10 रन प्रति ओवर की औसत से अब साउथ अफ्रीका को ये स्कोर चेस करने के लिए रन बनाने पड़ेंगे. आखिरी ओवर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पाले में गया, 17 रन आए उस ओवर में. और दोनों बल्लेबाज मैरिजोना कैप 17 पर खेल रही हैं, और ब्रिट्स अब अपने पैर जमाती हुई, अपनी आंखें जमाती हुई पहुंच गई हैं 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर. 22 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, उसमें एक चौका शामिल है. और मैरिजन कैप ने अभी तक 15 गेंदों में 17 रन बनाए हैं, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है. 113.33 की औसत से वो अभी तक बल्लेबाजी कर रही हैं. 59 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. शेफाली वर्मा ने 2 ओवर्स में 9 रन दिए हैं. नंदनी शर्मा ने 1 ओवर में 5 रन, अरुंधति रेड्डी ने 2 ओवर में 14 रन, श्री चंदी ने 2 ओवर 1 मिडन 2 रन 2 विकेट. नंदनी अपने ओवर के साथ राइट आर्म ओवर स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी. कावर्स में उसे धीरे से पुश किया, पर्याप्त समय था बल्लेबाजों को छोर बदलने के लिए. और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर. 10.1 ओवर्स की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज अब तक कर चुके हैं. मैरिजन कैप खेल रही है 18 पर. ब्रिट्स अब सामना करेंगी नंदनी के ओवर का दूसरी गेंद का, जो 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है. नंदनी शर्मा राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे उठाया है लॉन्ग ऑन का फील्डर. एक बार तो दिलचस्पी जरूर ले रहा था इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद उनसे काफी आगे गिरी और उनको फील्ड किया गया, वापस थ्रो किया गया, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के लिए. 61 पर स्कोर पहुंचा.
0: Yes, I got the feeling that she wanted it played over long off, did Brits. And the ball came slower off the wicket, and that's why it went over the bowlers at in the air. But well short of Radha Yadav there. Two singles in this over so far. 98 needed of 58. Nandini Sharma. Right in the block hole. Well bowled. Slower through the air. And Marizan Kapp can do no more than push it back along the wicket. And Richard Ghosh from behind the stumps applauds that delivery. This is getting to be a good over. Remember, the last one was a touch expensive. This was a slow ball. Right in the block hole there. Very well bowled by Nandini Sharma. And she's happy with it. The wicketkeeper is happy with it. Just the 2 runs in the first three deliveries. Nandini Sharma to Marizan Kapp. And this time she wants to go through with the stroke. And once again, very, very well bowled. So this is getting to be a very good over. And Marizan Kapp has to concede another dot ball as the ball goes through.
1: स्कोर 61 पर. 61 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर. 10.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और इस ओवर में एक बहुत ही अहम जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है. मैरिजन कप और नंदनी के बीच में लेग स्टंप के बाहर उसे स्कूप किया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: This time the experience, Marizan Kapp getting better of Nandini Sharma. Picks it up from outside off and deposits it over the fielder there inside the 30-yard circle and fine leg. Well over her, soaring over her down to the fine leg boundary for 4. So 6 runs in this over so far. Remember, they need around 10.25. Can Nandini Sharma end this well?

0: Cobb will lead the boundary. Last ball coming up, and Cobb sweeps it around the corner. Will she get it down to the back of square leg boundary? It will be cut off beautifully, and they go through for two. So 8 runs in this over from Nandini Sharma, and 11 overs ball. South Africa chasing 159-67 for two.
1: 67 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप खेल रही है 24 के अपने व्यक्तिगत योग पर और तास्मिन ब्रिट्स खेल रही है 22 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट होने वाले दो खिलाड़ी लॉरा वॉलफार्ट 20 रन बनाकर आउट हुए थे और एनरी डक्सन ने स्कोरर्स को तकलीफ नहीं दी थी शून्य पर आउट होकर गई थी दोनों विकेट्स 25 के स्कोर पर गिनी थी और उसके बाद अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी करी है करीब करीब अभी ये पार्टनरशिप 42 रन तक पहुंच गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत अहम ये पार्टनरशिप है साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव को लेकर क्योंकि अगर इस मैच में बने रहना है दीप्ति शर्मा ने ओवर की शुरुआत करती हुई ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और उसे स्क्वेयर लेग की तरफ खेलना चाहती थी ब्रिट्स नाकामयाब हुई गेंद उनके शरीर पर लगी कोई नुकसान नहीं कोई स्कोर नहीं स्कोर 67 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 11.1 ओवर्स के बाद 53 गेंदों में 92 रन चाहिए
0: डाउन द विकेट कम्स ब्रिट्स टू द नेक्स्ट डेलिवरी फ्रॉम दीप्ति शर्मा हॉइस्ट इट हार्ड एंड हाई फॉर अ सिक्स ओवर द बॉलर्स हेड
2: ये लगा आभा का छक्का
1: बेहतरीन शॉट था ये ब्रिट्स का आगे आई और बल्ले को पूरी तरह गेंद के नीचे लाके जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक और 76 मीटर लंबा यह छक्का था ब्रिट्स के बल्ले से निकला हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 73 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर अगली गेंद मारना चाहती थी और यह अपील आउट अंपायर की तरफ से इशारा आउट का लेकिन ब्रिट्स ने थर्ड अंपायर से मदद मांगी है कि क्या यह गेंद उनके बल्ले को लगकर पैड पर गई है
0: शी सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट द मोमेंट द अंपायर गिव इट आउट शी वेंट अप इमीडिएटली इफ शी इज नॉट गॉट बैट ऑन टू दैट दैट वॉज डेड स्ट्रेट सो द ओनली थिंग इज शी फील शी इज गॉट ग्लव और बैट ऑन टू दैट As the third umpire is having a good look at that, was there an inside edge? Onto that is what the third umpire will have a look at. And that will tell us whether there was bat onto that. And it does appear that probably there was bat onto that. And the umpire will have to reverse the decision. So, very clearly, Tasman Brits knew that there was bat onto that and she got it spot on 86 needed of 51 6 runs in 3 deliveries from Deepthi Sharma so far and this is going to be a very interesting contest because now the South Africans will want to up it it's around 10 runs and over as we keep saying they don't want to take it too high next delivery from Deepthi Sharma down the wicket comes Brits and drives it in a controlled manner down to mid-wicket right on the boundary and they get a couple for that. Now what the South Africans are doing to counter the Indian spinners is using their feet, trying to come to the pitch of the delivery and good stop there right on the mid-wicket boundary by Radha Yadav who is one of the better fielders in the Indian squad. 50 partnership of 37 deliveries, Marizan Cup. Getting 24 of that and 25 to Tasman Brits. Right in the block hole. Drilled away down to long on. And they go through for one. With that single 76 for 2. 83 needed of 49.
1: 11.5 overs ki jo gendbazi bharatiy gendbazon ne kare. Usme 76 run bane hai. 49 balon mein 83 run aur chahiye. South Africa ko is match ko jeetne ke liye. Aur Bharat ko chahiye. 8 wickets. इस मैच को जीतने के लिए हालांकि इस ओवर में एक अपील थी जिसे वापस किया गया अगली गेंद हल्का सा पुश भर किया गया लॉन्ग ऑन पर जमीमा के पास जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले 12 ओवर की गेम की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर मैरिजन कप खेल रही है 25 के अपने व्यक्तिगत योग पर 21 गेंदों का

0: उन्होंने अभी तक सामना किया है। इस 25 रनों में दो चौके और एक छक्का शामिल है और तस्मिन ब्रिट्स जो अब बहुत ही मुस्तैदी से अपनी आंखें जमा चुकी हैं और एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पारी खेल रही हैं। 31 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर हैं, 28 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, एक चौका और एक छक्का जो उन्होंने पिछले दीप्ति शर्मा के ओवर में लगाया था उसके साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर है 31 रन। साउथ अफ्रीका का स्कोर है 77 रन, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद 6.42 के रन रेट पर अभी बल्लेबाजी हो रही है और 10.25 की औसत चाहिए। अगली गेंद श्री चरनी की, अच्छी गेंद वापस खेला उसे कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, एक बार फिर से अपने जो मेन बॉलर है श्री चरनी को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया है, सिर्फ उनकी मंशा यह है कि विकेट हासिल करी जाए। अगली गेंद और उसको उठाकर मारा है और ये एक कैच की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे, गेंद सीमा रेखा पर फील्ड करी गई, एक अच्छी फील्डिंग का मुजारा, राधा ने गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन गेंद उनके हाथ से छटकी, दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, एक अच्छा प्रयास जरूर था लेकिन क्रिकेट को जब आप इस लेवल पर खेलते हैं तो ऐसे कैचेस पकड़ने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने अपनी टीम को जीत के लिए अग्रसर करना हो। श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद सामने उनके मार्जिन का और इस गेंद को उन्होंने उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, चार रन।
1: वेल टॉस अप बाय श्री चरनी दिस टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप।
0: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा हुआ 83 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। मैरिजन कप जैसे खिलाड़ी को आप अगर जीवन दान देंगे तो वो अपनी प्रतिभा का जौहर आपको जल्दी दिखाएंगी और अगले ही गेंद पे उन्होंने चौका जड़ा, जिसे कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कने की बात, और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 83 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। मैरिजन कप जो है वो अब पहुंच गई है 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर और साउथ अफ्रीका 83 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद और उसे हल्का सा पुश भर किया डीप मिड विकेट पर, बॉल को फील्ड किया गया लेकिन बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि जमीमा रॉड्रिक्स का जो थ्रो था वो बिल्कुल विकेट के ऊपर था लेकिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने अपने अपने छोरों को अच्छे से संभाल के रखा और ये दो रन के साथ स्कोर पढ़कर पहुंचा 85 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर।
2: दिस इज वॉट यू कैन अचीव इफ यू ड्रैग द बैट, वेरी वेल ड्रैग्ड इन बाय टस्मिन ब्रिट्स ओवर देयर एंड नाउ
0: मैरिजन कप अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाती हुई, जो अभी अभी उन्हें एक जीवन दान मिला था उसके बाद उन्होंने अपने बल्लेबाजी का जलवा और दिखाना शुरू किया और इस खूबसूरत चौके के साथ उनका स्कोर पहुंच गया 37 रन और श्रीलंका माफ कीजिएगा साउथ अफ्रीका बढ़ती हुई आगे तेजी से 89 for 2, 12.4 ओवर्स के बाद 43 गेंदों में 70 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच जीतने के लिए। शिचनी अपने ओवर की आखिरी गेंद और उस गेंद को हल्का सा डीप मिड विकेट की तरफ मोड़ा और एक रन चुराया बल्लेबाजों ने, 90 पर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का स्कोर इस सिंगल के साथ और 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका 90 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। बाकी बचे 7 ओवर यानी कि 42 गेंदों में 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को जीतने के लिए और भारत को अब बहुत जल्द चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका की कुछ विकेट्स इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। हालांकि पिछले ओवर में एक मौका जरूर लगा था लेकिन कैच को लपका नहीं गया और जीवनदान मिला मैरिजन कप को और मैरिजन कप ने उस जीवन दान के बाद अपने बल्ले को घुमाना शुरू किया, दो चौके उन्होंने उसके बाद जरूर लगाए और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ साउथ अफ्रीका का 90 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
2: दिस पार्टनरशिप हैज बीन गुड फॉर साउथ अफ्रीका 65, कैप इज 38, टस्मिन ब्रिट्स इज 31।

0: required run rate is 9.9 almost. Now, 7 overs remain. If these two stay there for another 2 or 3 overs, then South Africa can probably think that even 10 or 11 per over is possible with wickets in hand. From India's perspective now, India would like to get a wicket or 2 if possible over here, because these two are well entrenched, are Marizan Cup and Tasman Bridge. Both of them are really looking good. Remember, the last over from Shree Chandni was expensive. She bowled so well in her first 2 overs, and in the last over we saw her getting pummeled for boundaries as well. 69 needed of 42, and one of the reasons has been that Karp and Brits have started using the feet, not allowing the ball to grip and turn, getting to the pitch of the ball and playing ground strokes as well as lofted strokes, and also hit a couple of sixes. Shefali Verma coming in this time to Marizan Cup, short in length, and that's been hit away into the covers, and that's well fielded by Deepti Sharma. No runs or dot ball. Every dot ball will matter, every boundary will matter, and every good fielding effort will matter. Indians have said four to six runs already. Shefali Verma short in length, and that's played past mid-on inside the 30-yard circle for a single. Singles are okay from India's perspective. South Africa will certainly need boundaries from here on. Karp is 31. Brits is 31. Karp is 39. Partnership is 66. 10.2 the required run rate from here on. And this one is played into the covers. They want to run and they get it in the end also. Good calling, good response. But from India's perspective, Shefali has started quite well over here. Just 2 runs of 3 deliveries. She's cutting pace on the ball. 67 needed of 39 deliveries. Both the dugouts are quite tense, because next 2 or 3 overs will define which way this is going. Shefali gives that ball more air. Drilled too long off. One of the things we've seen in this over is they're not giving the ball too much air, not allowing the batters to use their feet, come to the pitch of that punt. She's holding it back. And after quite 3 or 4 overs, we've seen the ball being pitched short, faster through the air.
1: बिल्कुल जी, अगली गेंद और उसे धीरे से पुश भर कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए. लॉन्ग हैंडल्स का इस्तेमाल हल्का हल्का सा मैरिजन कप की तरफ से किया गया, जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए, 2 चौके लगाए, वो लॉन्ग हैंडल्स के साथ उन्होंने 2 चौके लगाए थे, और उसके साथ अब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू किया और फ्लाइट को भी कम किया, जिससे बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हुई. मैरिजन कप खेल रही है 40 के अपने व्यक्तिगत योग पर. शेफाली वर्मा के ओवर की आखिरी गेंद और एक तेज स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के खड़े फील्डर्स के पास. एक रन के लिए पर्याप्त समय था. 14 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का 95 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर. अगली 36 गेंदों में 64 रन दरकार है साउथ अफ्रीका को. इस मैच को जीतने के लिए भारत ने 158 रन बनाए थे अपने पहले 20 ओवर्स में, और अब बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने अभी तक 14 ओवर्स में. बाकी 6 ओवर्स में 64 रन उन्हें बनाने हैं 10.67 की औसत से. अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा पार्टनरशिप दोनों ने बिल्ड किया. अभी तक 70 रन बनाए हैं इन्होंने तीसरे विकेट के लिए. मैरिजन कैप्स खेल रही हैं 41 पर और ब्रिट्स खेल रही हैं 33 के अपने व्यक्तिगत योग पर. भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. शेफाली वर्मा ने 3 ओवर किए, 14 रन दिए हैं. नंदनी शर्मा ने 2 ओवर किए हैं. अरुंधति रेड्डी 2 ओवर. श्री चन्नी ने 3 ओवर किए हैं. प्रेमा रावत ने 2 ओवर किए हैं, जो उनका पहला मैच है. और दीप्ति शर्मा ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं. तर्मिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने दोनों के बीच में ये चौथीवा अर्धशतकीय साझेदारी है. इससे पहले उन्होंने 69 रन की साझेदारी करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, 58 रन की भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 में, 96 रन की भारत के अगेंस्ट 2024 में, और आज 70 रन से ऊपर वो जोड़ चुकी हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस ग्राउंड में. एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक अहम मैच जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर खेला जा रहा है.
0: 6 ओवर्स लेफ्ट नाउ इन दिस इनिंग्स, एंड यू नो श्री चंडी हैज गॉट 1 ओवर लेफ्ट, शी विल डेफिनेटली बोल दैट. Shefali Verma has got 1. She'll bowl that. Now, after that, 4 overs. Deepti Sharma has got 2 overs left. Definitely she'll bowl that. So, what is interesting to see, the remaining 2 overs out of the 6, after Shefali bowls a 1 over,

0: Chandi bowls one, Deepti bowls two, two mobile remain. And Nandini Sharma, Arundhati Reddy and Prema Rawat, the three bowlers that we've seen apart from Shefali, Sri Chandni and Deepti, who will get the remaining two overs, may not be the debutant, Prema Rawat. She's been expensive. Can't blame her. It's her first game. It could probably be two overs shared between Nandini Sharma and Arundhati Reddy. That could be the way in which the remaining six overs could be bowled.
1: भारत ने अब जब पहले बल्लेबाजी करी थी अपने 20 ओवर में 158 रन बनाए थे सात विकेट के नुकसान पर, जिसमें 39 डॉट बॉल्स थी, 18 चौके उसमें शामिल थे और एक छक्का भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए थे अपने 158 रन पूरा करने के लिए.
0: फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर एंड एज वी विल हैव टू वेट एंड वॉच हु एक्चुअली स्टार्ट्स ऑफ द बॉलिंग ऑपरेशंस. First for the first ball of a fresh over, but from India's perspective, we've seen some wonderful fielding as well as just the odd catch that was dropped. One would say that was a good attempt, actually, to be very fair to Radha Yadav, rather than say that was a drop catch. It was a wonderful effort. She's one of the better fielders India's got. So six overs remaining now, and 10.67 the required run rate, and this partnership has yielded 70. Yes, Arundhati Reddy, we said she'll probably bowl one over. She's got the ball in her hand, and South Africa now 95 for 2, required run rate 10.67 from here on. From close to the sums, full toss, that's been clobbered away, but there is a fielder there, Jemima Rodrigues, patrolling that boundary at mid wicket, just the one. 63 of 35 from here on for South Africa to go through. If one were to look at it, this is even more a crucial game for South Africa than it is for India, while it's important for both, because India, if they win here, they'll be in the driver's seat. Arundhati Reddy, and that's been lofted over the bowler's head. That'll go down a couple of bounces to the side screen for four.
2: ये लगा आभा का चौका,
1: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर साउथ अफ्रीका का पहुंचा हुआ 3 अंकों पर 100 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर 14.2 ओवर्स के बाद ये स्कोर 100 पर पहुंचा. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और सीधे बल्ले से उसे उठाकर मारा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर पैड पर लगी और भागकर 1 रन चुराया, और स्कोर इस 1 रन के साथ 101 पर पहुंचा दो खिलाड़ी के नुकसान पर 14.3 ओवर्स के बाद. साउथ अफ्रीका ने अपने पहले 50 रन पूरे किए थे 56 गेंदों पर, और दूसरे 50 रन हमारे स्कोरर रावत जी बता रहे हैं उन्होंने 30 गेंदों में पूरे किए. इसका मतलब बल्लेबाजी अब काफी तेज हो रही है. अरुंधति रॉय अपने ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, गेंद थी उसे स्कूप कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: Bad ball from Arundhati Reddy down the leg side, and all that the batter had to do is help it on its way, which she did so beautifully. Marizan Kapp just lofting it nonchalantly down to the fine leg boundary for 4. Turning out to be expensive this over from Arundhati Reddy. 54 of 32 now. 14.4 overs. 5 points to go after this. Partnership is now worth 80. And the required run rate just a touch over 10. 10.13. Remember, the last wicket fell when it was 25. Looks like a long, long time back. Arundhati Reddy. This time to Marizan Kapp, who picks it up from outside the off stump. And deposits it down to the mid-wicket boundary for 4 more.
2: ये लगा आभा का चौका,
1: और इस चौके के साथ मैरिजन कप का अर्धशतक पूरा. 34 गेंदों में इन्होंने अपने ये अर्धशतक पूरा किया. इन 50 रनों में 6 चौके शामिल हैं और एक खूबसूरत छक्का इस ओवर में अरुंधति रेड्डी के ओवर में. इस ओवर में अभी तक वो 3 चौके जमा चुकी हैं, 3 चौके आ चुके हैं, और मैरिजन कप दिखाती हुई अपने बल्लेबाजी का जौहर, और क्यों उन्हें विश्व का सर्वोत्तम ऑलराउंडर माना जाता है, उस लिस्ट में उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है. आज साउथ अफ्रीका के लिए एक अहम पारी खेलती हुई अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, और

0: से हल्का सा पुश भर किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बड़ी मुस्तैदी से दो रन चुराए बल्लेबाजों ने और इस दो रनों के साथ स्कोर पहुंचा 52 और 111 दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15 ओवर में। मैरिसन कप की यह छवीं अर्धशतकीय पारी थी, उनके बल्ले से आए हुए ये छवीं अर्धशतकीय पारी थी उनके करियर की और आज इस महत्वपूर्ण और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए अभी तक 52 रन अर्जित किए हैं और अपनी टीम को मुश्किल वाली जो छोर था उसमें से बाहर निकालने की अपने पूरी कोशिश करते हुए जो रन रेट एकदम एक समय बढ़कर 10.9 तक चल गया था वो अब घटकर 9.6 रह गया है, यानी कि बचे 5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए।
1: Yes, indeed. This partnership is now taking the match down to the wire. They are making a fight of it. 111 for 2. Kaap is 52. Tasman Brits is 37. This partnership 86. And that's come at a very good run rate as well, particularly in the last 2-3 overs. The last over from Arundhati Reddy was 16 runs. Very, very expensive. The most expensive of this inning so far. Deepti Sharma has the ball in hand. 48 of 30 needed. From outside the off stump, she wants a pummel, it does Brits. And the ball ricocheting on the onside for just a one. Should be leg byes. And the impact was certainly outside off. The Indians having a thought there, but very clearly inside, very impact very clearly outside off. Now Harmanpreet Kaur has a word with Deepti Sharma. Some thoughts being exchanged because these next couple of overs are going to be so important in the context of this game. If South Africa manage to get a couple of more good overs, they can take it through. But if India can squeeze South Africa in the next couple of overs, beginning from this one, from Deepti Sharma, she's got all the experience behind her. Some readjustments being made in the field. One thing is get the field in place. The other is break the momentum. Remember, South Africa have got two good overs. So one way is to take your time and break the momentum. The momentum that's been developed now by Marizan Kaap and Tasman Brits. That's a good idea as well.
0: 112 दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद और अब दीप्ति शर्मा बिल्कुल तैयार। राउंड द स्टंप से ये गेंदबाजी कर रही है और उसे हल्का सा ग्लाइड किया स्क्वेयर बाउंड्री की तरफ, डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, एक रन चुराया बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 113 दो खिलाड़ी के नुकसान पर। 7 से 15 ओवर्स में भारत ने 57 रन बनाए थे तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर, 16 डॉट्स खेली गई थी और इसी दौरान 7 से 15 ओवर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 86 रन बनाए हैं और 13 डॉट्स इनमें खेली गई हैं आंकड़ों के हिसाब से। अगली गेंद और बहुत तेज शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री को रोककर दो रनों में तब्दील किया जमीमा रॉड्रिक्स ने, लेकिन दो रनों के साथ स्कोर पहुंचा 115 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। 6 हाफ सेंचुरीज जो मैरिसन कप ने अभी तक बनाई है, 75 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, 60 रन श्रीलंका के खिलाफ, 57 रन भारत के खिलाफ, 56 रन पाकिस्तान के खिलाफ, आज भारत के खिलाफ अभी वो 53 रन पर खेल रही हैं और इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 52 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। स्कोर 115 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15.3 ओवर्स में। 27 गेंदों में 44 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए और भारत को जल्द जल्द कुछ विकेट्स ताकि मैच में वापसी करी जा सके।
1: 44 of 27 comes down the wicket once again. The Tasman Brits drives it in a controlled manner to long on. 116 for 2. Fielded there by Jemima Rodrigues. And so this over so far, no boundaries in the Deepti Sharma over. Will she end it well? 116 for 2. 43 of 26 needed from here on. Deepti Sharma so far conceding only singles in this 16th over. Round the wicket and once again ball very close to the tab lines, that been driven, will be cut off by Shefali Verma, wide of long off inside the boundary, they go through for a couple. So this is a good over. Just the singles and the couple in the last ball. 41 of 25 needed now. Remember, the required run rate is now just under 10. So can she end it well, Deepti Sharma? Not concede a boundary. A single or two will do, because that will then up that required run rate even further. 9.84 it is right now. From round the wicket to Madison Karp, who's drilled it. Pass extra cover to the boundary for four.
0: मैरिजन काप के बल्ले से ये निकला बेहतरीन शॉट कवर बाउंड्री के बाहर. चार रन फुल टॉस गेंद थी. न्योता दिया गया था मैरिजन काप को शॉट खेलने के लिए और उस न्योते को उन्होंने स्वीकारा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया. 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन काप की एक बेहतरीन पारी जो अभी तक उन्होंने खेली है 59 रनों की. और साथ में उनका साथ दे रही है ब्रिक्स, जिन्होंने अभी तक बनाए हैं 40 रन अपनी बल्लेबाजी में और ये 40 रन के लिए उन्होंने 35 गेंदों का इस्तेमाल किया है. मैरिजन काप जो अभी तक खेल रही है 59 के अपने व्यक्तिगत योग पर, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है. 155.26 की औसत से ये बल्लेबाजी कर रही है. 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर पूरी तरह गिरफ्त बनाई हुई है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने. इस मैच पर जो एक समय पे जो रन रेट था वो 10 से पार था, अब वो घटकर 9.25 रह गया है. अगले 24 जो गेंद है, जो 24 गेंदों में 37 रन की जरूरत है साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को अपने नाम करने के लिए. और वहीं भारतीय खेमा चाहेगा कि इस पारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, इस जोड़ी को जल्द से जल्द अलग किया जाए ताकि प्रेशर वापस साउथ अफ्रीका पर डाला जाए.
1: She certainly has got one over. She's bowled 3 for 15 with 2 wickets. So certainly she will bowl one over. 4 overs in the South African innings so far. Shefali has bowled 3 for 14. So she'll bowl one over. Those will be 2 overs for sure. Another 2 overs. Deepti Sharma has been a touch expensive today. 28 she's conceded of 3. But she's got all the experience. And she bowls at the death for India. So she'll probably get one. And then there's one over to be bowled amongst Nandini Sharma, Arundhati Reddy, and Prema Rawat. So it's Shefali Verma, as I expected, with the ball now to bowl what will be the 17th over, as 37 is needed of 24. Karp and Brits together, 97 this partnership. Close to 100. What a partnership this has been for South Africa after they lost Wolfart and Dirksen relatively early. 122 for 2 now. Indians have also bowled in a disciplined manner so far. Just the 3 extras, and of which 2 have been leg by. So just the 1 wide. We saw South Africa bowling very disciplined manner in 20 overs. They conceded just the 1 wide. India also so far in 16 overs. Just the 1 wide ball. First ball of Shefali on buzz overs. Lofted hard and high. Taken! Taken there right on the mid-wicket boundary. That's the wicket India wanted. Desmond Brith goes. A crucial wicket at a very important juncture.
0: 97 run ki ye bhagedari शेफाली वर्मा ने अपने हाथों से तोड़ी और एक अच्छा कैच केयर लेग बाउंड्री के ऊपर और ब्रिट्स आउट होकर वापस जाती हुई. 40 रन का उनका योगदान रहा इस 97 रन की जो भागीदारी थी. हालांकि स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से वो एक लंबा शॉट खेलना चाह रही थी लेकिन नाकामयाब रही और एक अच्छा कैच पकड़ा गया बाउंड्री के ऊपर श्री चरनी द्वारा और तस्मीन ब्रिट्स 40 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर वापस जाती हुई. 39 रनों के लिए उन्होंने 36 गेंदें खेली और वापस श्री चरनी के हाथों कैच हुई. शिफाली वर्मा ने ये एक अहम विकेट दिलवाया जिससे भारतीय टीम अब वापसी करने की कोशिश जरूर करेगी. 122 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर साउथ अफ्रीका 16.1 ओवर की समाप्ति के बाद शिफाली वर्मा अपने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक अहम भागीदारी को तोड़ने में कामयाब हुई और श्री चरनी ने बगैर किसी गलती से उस कैच को लपका और अब नंद नए बल्लेबाज नादीन डिक्लार्क क्रीज पर, जिनके नाम पर 61 मैचेस हैं, शेफाली वर्मा की अगली गेंद को खेलते हुए. अच्छी गेंद, एकदम यॉर्कर और एक अहम समय पर उनका बल्ला नीचे आया और गेंद बल्ले से लगकर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्ड

0: the scoop, fetch it from outside off, over fine leg, and the ball coming much slower off the wicket and going and disturbing the furniture. Once again, Sri Chandni gets India a crucial wicket, and that's the dangerous Nadine de Klerk. South Africa now 137 for 4.
1: 137 चार रन चार खिलाड़ी के आउट होने के बाद और अभी अभी आउट होकर गई हैं नादीन डी क्लर्क, जो उसे स्कूप मारना चाहती थी, गेंद विकेट टू विकेट कर दी थी श्री चन्नी और उसका फायदा उन्हें मिला, बोल्ड किया गया, सात गेंदें खेली थी, हालांकि पिछली बॉल पे उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव मारा था इनसाइड आउट निकलकर चार रन के लिए, लेकिन श्री चन्नी ने अपनी लाइन को सीधा रखा, विकेट टू विकेट जो क्रिकेट के बेसिक्स है उसको फॉलो किया और नतीजा एक अच्छी विकेट उनके नाम पर आती हुई। अब ट्रेन क्लोई ट्रेन विकेट पर आती हुई अगले बल्लेबाज के रूप में और मैरिसन कप एक छोर संभाले हुए सट सट के अपने स्कोर पर 41 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, 13 बॉलों में 22 रन चाहिए और श्री चन्नी अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद के साथ बॉलिंग मार्ग पर और सामने ट्रायन तैयार अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और एक अच्छा शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ कवर बाउंड्री के बाहर चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: Went outside the off stump for a change by Sri Chandni and Chloe Trine rocking onto that back foot, punching it through that arc of the offside, through to the cover boundary for four. Once again, they managed to get a boundary of the last ball, a very crucial boundary in the context of the game. Now, two overs remaining and required run rate is under 10 back. It's 9 runs per over. What is needed is 18 of 12 deliveries. Now they will fancy themselves as well, the South Africans. Cap is on strike. She's 67 of 41. This will be a very important over. Shefali is done. Sri Chandni is done. Deepti has got one over left. Deepti Sharma, in all probability, 18 of 12. Now Deepti Sharma has got loads and loads of experience in these kind of situations. In the death overs, she generally bowls. But I tell you what, at the other end is Marizan Kapp, who's also got loads and loads of experience, and she knows how to hold her nerve in these kind of situations. She's firmly entrenched there, 67 of 41, and here is Deepti Sharma from out of the stump. Now this time it's pummeled away down to backward square leg, straight to Prema Rawat for a single, 17 of 11. India won't mind the singles. What they don't want is boundaries. From South Africa's perspective, couple of boundaries here and they'll be in the driver's seat. What India will want Deepti Sharma to do is, can she get two or three good balls here? Give just the one, maybe two, not the boundaries, not the over boundary. Deepti Sharma. This time, Chloe Trine, that's a good ball, kept low after pitching, and she's pulled it away once again to Jemima Rodrigues. So just the two singles and two deliveries.
1: Deepti Sharma, अपना पूरा का पूरा जो experience है उनके पास, जो तजुर्बा है, वो उसको झोंकती हुई और कोशिश ये कर रही है कि इस ओवर में कोई लूज बॉल ना करी जाए, कोई ऐसी बॉल ना दी जाए जिससे आराम से कोई स्ट्रोक लगे और चार रन मिले, और उनका सबसे बड़ा फोकस रहेगा मैरिसन कप। ये गेंद और उसे उठा के मारा मैरिसन कप ने, सीमा रेखा के बाहर छह रन।
2: ये लगा आभा का छक्का।
0: गिवन द बॉल अ लॉट ऑफ एयर इन द स्लॉट इन द आर्क, इट वेंट आउट ऑफ द पार्क, दैट्स व्हाट मैरिसन कप से 67 मीटर बाउंड्री एंड आई टेल यू व्हाट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल राउंडर्स विमेन्स क्रिकेट हैज एवर सीन इज taking us South Africa within a couple of strokes of victory. 10 needed of 9. Couple of boundaries from here. 1-6 will take South Africa home. What an innings this has been by Marizan Kapp. 74. And that ball from Deepti Sharma, lot of air. She fetched it in the slot as well, as I said. And hard and high, bent over mid-wicket for a 6. Now the Indians, lot of discussions happening, because they know that this is within South Africa's grasp. 10 needed of 9. And Marizan Kapp is on strike, more importantly. Deepti Sharma to Marizan Kapp on the leg stump. She's once

0: again, pummeled it. This time it'll be cut off by Jimmy Rodericks on the mid-wicket boundary. So 9 needed of 8.
1: 150 run, 4 khiladi ke nuksan par 18.4 overs ke baad aakhri 50 run 26 gendon mein South Africa ne banaye. Pehle 50 56 gendon mein, phir 50 30 gendon mein aur aakhri 50 26 gendon mein banaye hai South Africa mein aur isme bahut bada jo haath hai wo Madison कप का है जो इस समय 75 रन पर खेल रही है 44 गेंदों का सामना करते हुए दीप्ति शर्मा अपने ओवर की अगली गेंद पांचवी गेंद ऑफ स्टंप पे बाहर उसको निकलकर लेग स्टंप के बाहर निकलकर मारने की कोशिश की कामयाब हुई एक रन चुराने के लिए पर्याप्त है क्योंकि अब सामना करेंगी मैरिजन कप इस ओवर की आखिरी गेंद का 151 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका को ग्रुप ए के इस तीसरे मैच को अपने नाम करने के लिए लेग स्टंप के बाहर गए और उसे उठा के मारा है 6 रन मैरिजन कप के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर
2: ये लगा आभा का छक्का
0: Madison Cup, what an innings have you played over here? 81 not out of 45 deliveries and 7 fours, 4 sixes. What an innings in such a crucial game. Holds a nerve. That went soaring over mid-wicket for 6. And now, South Africa, just 2 needed of the last over. And this must be South Africa's game without any doubt. 81 of 45. Marizan Kapp has played like a champion that she's been. And the South African dressing room now wears a very happy look. This was a crucial game for them. And boy oh boy, have they now taken it to victory. On the doorstep of victory over here literally. 2 of 6. This is South Africa's game for sure. Glory triumph. Will take strike to the first ball of the last over. And the first ball of the last over, that's been steered away to the vacant slip region. Might well carry down to the third mid boundary for 4. South Africa win. Laura Mulstad is a happy captain. This is a magnificent win for South Africa. And South Africa have won this crucial game, beating India by 6 wickets. At Old Trafford, Manchester, a magnificent victory in a crucial game in the ICC Women's T20 Cricket World Cup. So South Africa will win by 6 wickets and please stay back for our sponsored special program, Player of the Match.
1: 158 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर भारत ने बनाए थे पहले अपने 20 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए और पीछा करते हुए 19.1 ओवर की समाप्ति के बाद 161 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप ने बनाए 81 रन और बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और ये 2 अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए

0: और इसके साथ एक बेहद रोमांचक मुकाबले का हुआ है अंत। भारत को साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से मात दी है और सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी राह खुली रखी है। मैं हूं मुदिता, मेरे साथ है मेरे को होस्ट मुनीष जॉली और एक्सपर्ट्स पैनल में हैं रविंदर सिंह, वैशाली माथुर और उत्तरा गणेशन। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। मुनीष,
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा और क्रिकेट इसी को कहते हैं, उलट पलट इधर उधर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, वैशाली आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आई नो यू आर अपसेट कि इंडिया हार गई, बट क्रिकेट यही है, दिलचस्प था मैच।
2: बिल्कुल, लेकिन फील्डिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुई है, बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग नहीं हुई है। जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो कैचेस अगर हम ले लेते तो ये मैच हमारे नाम जरूर हो सकता था। लेकिन वही कहते हैं ना, डिफरेंस सबसे ज्यादा मेन जो होता है वो फील्डिंग करता है। साउथ अफ्रीका की अगर हम फील्डिंग की बात करें तो वो लाख गुना बेटर थी एज कम्पेयर टू आवर फील्डिंग।
1: आपको लगता है कि उत्तरा, यू नो, दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री वंस अगेन, वी थॉट दैट इट्स गोना बी एन इजी मील फॉर द इंडियन प्लेयर्स वंस दे गॉट द फर्स्ट 2 विकेट्स, बट देन द वे साउथ अफ्रीका केम बैक, इट्स दैट रिदम दैट

0: seem to like the Indian fans. It feels like they're shouting my name, so don't mind the crowd too much. Congratulations. Our player of the match today, Murray Zahncup. Thank you.
1: मारिजान काप वहां पे बनी है प्लेयर ऑफ द मैच और क्यों नहीं, 81 बनाए 45 बॉलों में और 7 चौके और साथ ही साथ 4 छक्के भी उन्होंने लगाए, तो 52 रन की जो उन्होंने 51 रन की पारी में से 52 रन जो थे वो बड़े शॉट्स के साथ थे। शी केप्ट ऑन सेइंग वैशाली थैंक्स टू जीसस क्राइस्ट।

0: साथ ही साथ 4 छक्के भी उन्होंने लगाए, तो 52 रन की जो उन्होंने 51 रन की पारी में से 52 रन जो थे वो बड़े शॉट्स के साथ थे. शी केप्ट ऑन सेइंग वैशाली थैंक्स टू जीसस क्राइस्ट. स्पिरिचुअल लग रही हैं थोड़ा सा, ज्यादातर क्रिकेटर्स होते हैं स्पिरिचुअल.
1: वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गेम खेलते हैं एंड आपकी फैमिली कैसा बैकग्राउंड है. एंड उसके साथ मैं ये और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका का आप बैटिंग लाइनअप तो देखा ही हमने, उसके साथ उन्होंने जितनी बॉल्स उन्होंने खेली है उससे ज़्यादा उनके स्कोर्स हैं, आप ये देखिए. और हम वही अगर हम इंडिया टीम की बात करें, एक शेफाली वर्मा को छोड़ के जितनी बॉल्स उन्होंने खेली उससे उसी के अराउंड में उनके रन्स हैं. तो ये एक डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता वो यही डिफरेंस है.
2: जी बिल्कुल, यही डिफरेंस है. उत्तरा लॉरा और डर्क सिंह के आउट होने के बाद ताजमन ब्रेड्स और कैप ने जिस तरह संभाला पारी को, भारतीय मिडिल ऑर्डर वो नहीं कर पाया. क्या वही सबसे बड़ा फर्क था आज दोनों टीम्स के बीच में?
3: मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका वाज स्मार्टर, दे प्लेड अ मच स्मार्टर गेम आउट देयर. दोनों इनिंग्स में जब वो बॉलिंग कर रहे थे तब भी उनको बहुत क्लियरली पता था कि किस एरियाज को टारगेट करना है, किस प्लेयर्स को टारगेट करना है और क्या गेम खेलनी है. हमने टॉस के टाइम पे भी सुना, बहुत क्लियर थे कि ताजमन ब्रिड्स क्यों टीम में वापस आई हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया की स्ट्रेंथ इनकी स्पिन बॉलिंग है एंड उनको ऐसा एक सीनियर प्लेयर चाहिए था जो स्पिन अच्छा खेल सके. तो उनको बहुत क्लियरली वो पूरा होमवर्क करके आए थे किन प्लेयर्स को टारगेट करना है. उन्हें ये पता था कि अगर इंडियन टीम में अगर हम स्मृति को छोड़ दें तो ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा क्रैम्प करेंगे रन्स के लिए तो वो फ्रस्ट्रेट होके बड़ा शॉट खेलने जाएंगे. वो नहीं, पेशेंस लेवल नहीं है उतना कि आप बैठें, बॉलिंग को देखें, फील्डिंग को देखें, टाइम लें. T20 हालांकि बहुत छोटा फॉर्मेट है लेकिन टाइम इसमें भी होता है अपने आप को सेटल करने का. लेकिन उन्हें यह पता था कि अगर आप उनको नहीं देंगे, डॉट बॉल्स देंगे, तो वो जाएंगे बड़े शॉट के लिए, जो हुआ. और हमने देखा कि वो नहीं खेल पाए उस तरह से. जब वो बैटिंग करने आए तो उनको बहुत क्लियर था, एक तो ताजमन ब्रिड्स को उन्होंने इंक्लूड किया, वो हमने डिफरेंस देखा उन्होंने उनकी और कैप की जो पार्टनरशिप थी. उसके बाद हर एक ओवर में जैसा कि कैप ने बोला कि बहुत क्लियर थे कि हमको 10 से ऊपर नहीं जाने देना है रिक्वायर्ड रन रेट किसी भी हाल में. अगर आपके एक ओवर में रन नहीं आते हैं तो आप अगले में दो चौके मार के उसको बराबर कर दो, बट 10 से ऊपर हम नहीं जाने देंगे टारगेट. तो चाहे वो पहला ओवर हो या दूसरा हो या 10वां ओवर हो, उनकी स्ट्रैटेजी पूरे 40 ओवर के लिए बहुत क्लियर थी, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन टीम लैक कर गई बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से हो, चाहे वो किस तरह की बॉल किस प्लेयर को करानी है उस पे हो. तो मुझे लगता है वही डिफरेंस था कि आपकी प्लानिंग, होमवर्क और स्मार्ट प्ले कितना ज्यादा है, और वो साउथ अफ्रीका का हमसे बहुत बेटर था.
0: राइट देन, आप सुन रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच. मेरा नाम है मुनीश जौली, मेरे साथ मुदिता है और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं. रविंद्र सिंह हैं, वैशाली माथुर हैं, उत्तरा गणेशन हैं. रविंद्र सिंह जी, मुझे ना कुछ साल पीछे जाने का मन कर रहा है, पन्ने पलट रहा हूँ कुछ. 1983 इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल इसी ग्राउंड पे हुआ था 22 जून को, आज 21 जून है. चेस करके भारत ने वो मैच जीता था. बहुत सारी बातें आज भी हम कर सकते हैं, टॉस जीत के आपने चेस क्यों नहीं किया, जब एक ट्रेडिशन है ओल्ड ट्रैफर्ड में. बहुत सारी बातें और हम जानना भी चाहेंगे. श्रीलंका पाटिल नहीं है, क्या वो एक वजह थी? राधा आई, उनका इंजर्ड था हाथ. अब जब हम बात करते हैं प्रेमा रावत की, वो ज्यादा ओवर क्यों नहीं डाल पाई? लेकिन आपको क्या लगा जब 159 टारगेट दिया गया और हमने पावर प्ले में 2 विकेटें उड़ा दी, तब आप क्या सोच रहे थे और अब क्या हुआ?
4: देखिए, हारने के बाद बहुत कारण बन जाते हैं. अब अगर वही यही टीम इंडिया जीत रही होती तो सब कुछ अच्छा हो चुका होता. श्री चन्नी ने अच्छे 2 विकेट निकाल दिए, वो 3 प्लेयर्स थे वो कंसिस्टेंट चल नहीं रहे थे, उन तीनों को आपने आउट भी कर लिया, लेकिन ये 2 प्लेयर निकल के आ गए. देखिए, स्टार्टिंग से अब शुरू करेंगे तो पहली तो टॉस के बाद सबको लगा ही था कि शायद चेज करना चाहिए था, क्योंकि इस ग्राउंड में चेज हमेशा अच्छा होता है. चलिए, आपने बैटिंग करी, 160 रन बनाए, लेकिन फिर आप वापस आ गए गेम में. 5 ओवर के बाद आप गेम में वापस आ गए. मुझे जो लगता है टर्निंग पॉइंट इसका सिर्फ राधा यादव के जो कैचेस थे, जो वो अंदर फील्डिंग करने गई और उसको भेजने का, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट है जिसने राधा को भेजा अंदर, जबकि उनके हाथ में बैंडेज था. कैच वो कैसे पकड़ पाएंगे मुझे लगता नहीं, ग्रिप कर पाएंगी. उसके बदले अगर कोई और फील्डर होता तो मुझे लगता है डिफरेंट मैच होता. मैच इंडिया ने अपने हाथ में

0: निराशाजनक चीज हमने जो देखी है ये गलत है तरीके से ये देखा गया है कि यहाँ पर फील्डिंग ज्यादा मैटर करती है हमने. और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की जो हमारी दीप्ति शर्मा का इतना 15 इयर्स का वो एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर उनके पास है तो उन्होंने उस तरह की वो बॉल डाली नहीं आज जैसे उन्होंने फर्स्ट मैच में डाला था जो 5 विकेट अपने नाम की थी उस तरह का बॉलिंग आज दिखा नहीं दीप्ति शर्मा की तरफ से.
1: आई थिंक उस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं लेकिन आपने बैकअप की बात की ना मेरे पास 2 बैकअप है
0: जी.
1: एक तो ये कि जो 50 ओवर का फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका से भारत ग्रुप गेम्स में हारा था फिर फाइनल जीता था पहला बैकअप. दूसरा हमारे कॉलर्स हैं दूसरे बैकअप उनके पास चलते हैं. हेलो कौन है हमारे साथ.
2: गुड इवनिंग है.
1: गुड इवनिंग.
2: माय नेम इज अजय है अब बट मैं धारनी से बात कर रहा हूँ. तो फर्स्ट बॉल 20 में मेरे एक दोस्त प्रकाश कॉल किया तो मैंने वो सब सुना. तो यार मनीष सर उत्तरा मैडम और रवि सर के लिए मेरे 2 क्वेश्चन है.
1: जी वो लोग सुन रहे हैं आपको पूछिए.
2: या तो अगर स्मृति आउट अगर जल्दी हो जाती है तो हमारे पास इतना बैटिंग कोलैप्स है क्या कि हम जो संभाल के टिक के खेल सकते या फिर उन दोनों पे डिपेंड है. और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जो फील्ड मैनेजमेंट जो अभी इसका सैलरी मैम है तो उन पे हम बहुत डिपेंड देते हैं कि फील्डिंग बहुत जबरदस्त रही है. ठीक है जबरदस्त है बट जो जो फ्रंट लाइन मैचेस रहते हैं तो हम उससे अमल कर सकते हैं उन कैचेस पकड़ सकते राधा वर्ल्ड द बेस्ट फील्डर. बट हम अगर नॉर्मली मेन मैचेस में ऐसे गलतियाँ करेंगे तो हम आई मीन वर्ल्ड कप जितना मेरे लिए रहेंगे.
1: ये हमारे बैकअप थे ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज गॉट एन आइडिया. रविंद्र जी आप आंसर करना चाहेंगे. सबसे पहले कह रहे हैं स्मृति अगर आउट हो जाए पहले तो पूरी टीम आउट हो जाएगी क्या.
3: देखिए बैकअप आपके पास कुछ भी नहीं है 15 की टीम आपकी बस गई है. उसके बाद जो बाहर बैठे हुए आप देखिए कौन कौन है. क्रांति गौड बाहर बैठी हुई है राधा यारा बाहर बैठी हुई है और रेणुको सिंह भी बाहर बैठे तीनों फास्ट मीडियम पेसर्स हैं. आपके पास बैट्समैन की कोई भी एक तरह का अगर एक भी बैट्समैन नहीं फ्लॉप होता तो आपको बाहर से लाना पड़ता है. यही हाल उसका हुआ तीनों. आपका कोई बैकअप नहीं कोई मैनेजमेंट नहीं है. वर्ल्ड कप में भी बताया उन्होंने जब भी हमारे पास 15 में से बाहर के प्लेयर को लेके हमें लेके आना पड़ता है. आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि अगर एक भी बैट्समैन फेल होता है उसके बाद दूसरा बैट्समैन कौन आएगा. आप लेके चलते हैं कि ये हमारे ये हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यही खेलेंगे चाहे वो कुछ भी परफॉर्म करे. तो ये तो राम भरोसा चल रहा है आपका. और अगर आपको यही इसी चक्कर में राधा यादव जो इंजर्ड है फिर भी आप उसको फील्डिंग कराने के लिए भेज दीजिए बड़ा हैरानी की बात लगी.
1: मुझे तो लग रहा है कि राधा यादव का नंबर लेके ना मुझे पाजी को देना चाहिए. और ये पाजी आपके नहीं मेरे ख्याल से सभी के मन में ये सवाल है. एंड दी कॉलर ऑफ कोर्स उत्तरा आई जस्ट आस्क्ड यू नो द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स दे सेड दैट यू नो यू कंपेयरिंग विद साउथ अफ्रीका बट वी कंसीडर आवरसेल्व्स एज वन ऑफ द मोस्ट प्रो साइड इन द वर्ल्ड नाउ वेदर इट्स वुमेन और मेन क्रिकेट बोथ. यू थिंक दैट वॉज वन ऑफ द मेजर फ्लॉज समबडी हु इज इंजर्ड हर फिंगर एंड यू गेट हर इन and you place her at the most crucial places.
4: I think the key word is we consider ourselves to be pro. There's a thin line between considering yourself something and actually being something. And consider karna bahut aasan hota hai. होना आपको ग्राउंड पे ही दिखाना पड़ता है वो बाहर से बात करके नहीं होता है. ऑन पेपर स्मृति हर मैच में सेंचुरी मार सकती है ऑन पेपर हरमनप्रीत हर मैच जीत सकती है बट आपको वो चीज़ वहाँ पे करनी पड़ती है. और जैसा सर ने कहा आई कंप्लीटली एग्री. एक 15 या 16 का जब स्क्वाड अनाउंस होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है कि अगर आपके जो प्लेइंग पहले 11 हैं उनमें से आपको चेंज करना पड़े किसी भी वजह से चाहे वो कंडीशंस की वजह से हो या इंजरी की वजह से हो या ऑपोजिशन के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन देखना हो तो जो बाकी के 4 या 5 हैं रिजर्व में आपके उनमें से आप उनमें से आप खिला सकें. अगर आपको हर इंजरी पे एक बाहर बैठा हुआ प्लेयर या किसी को फ्लाई इन कराना पड़े या हेलीकॉप्टर इन कराना पड़े तो जो आपकी साथ में रिजर्व जा रही है वो किस लिए जा रही है. आई एम श्योर वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए आप 6 लोग एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रहे हैं टीम में.
1: बट यू नो वॉट आई एम सॉरी बट यहाँ मुदिता ने एक सवाल पूछना. मुदिता मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि यू नो ये तो सब हल्की बातें हो रही है मतलब टफ बात मैं आपसे जानना चाहूंगा. आपको नहीं लगता कि राधा यादव के लिए उसके करियर के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा कि आप एक फ्रैक्चर्ड फिंगर लेके खेल रहे हो और कोई ऐसा शॉट आ जाए आप उसको और इंजर कर दो अपनी फिंगर को स्पेशली जब आपने श्रियंका पाटिल

0: को खो दिया तो वो और घातक हो जाएगा भारतीय टीम के।
1: बिल्कुल, और राधा यादव जैसी फील्डर, शी इज एन एक्सलेंट फील्डर, हमने कई मैचेस में उनका प्रदर्शन देखा है, कई बार वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आई हैं फील्ड पर और बहुत शानदार फील्डिंग उन्होंने करके दिखाई है। पर हाँ, फ्रैक्चर्ड फिंगर के साथ हम किसी खिलाड़ी को अगर ग्राउंड पर खड़ा कर रहे हैं और उससे उम्मीद रख रहे हैं कि वो कैचेस ले लेगा या बॉल्स रोक लेगा, तो ये शायद उस खिलाड़ी के साथ भी अन्याय है। अगले खिलाड़ी पे हम आना चाहेंगे वैशाली, शेफाली वर्मा। आज पहला ओवर उनसे कराया गया है और अब काफी तौर पर यह साफ हो गया है कि शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है। जो एक छठे बॉल की कमी खलती थी, उन्होंने वो गैप भी भर दिया है, एंड सिंस इट हैज गिवन इंडिया एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन एंड हेंस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन टीम सिलेक्शन ऑल्सो।
2: या ऑफकोर्स, लेकिन शेफाली वर्मा की अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हो ना, तो उसमें आपको मैं बताऊं, चार ओवर में, फोर ओवर्स के अंदर उन्होंने 11 डॉट बॉल दिए हैं जिसमें प्लेड हुई हैं वो सिर्फ, एंड उसके साथ जो मेन हमारा बॉलर है दीप्ति शर्मा, उनकी पांच ही बॉलें डॉट हुई हैं। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना डिफरेंस है। आप एज अ पार्ट टाइम बॉल डाल रहे हैं और मेन आप ओपनर बैठे हैं और आप मेन एज अ ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं टीम में, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट, हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बॉलिंग एक्शन एंड बॉलिंग डॉट्स में भी। तो वो चीज़ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेन बॉलर इतना कम डॉट बॉल करा के और वो आप मैच जिताने की तरफ लेके जा सकते हैं।
0: इसी बात पे मैं थोड़ा सा और ऐड करवाना चाहूंगा बहुत जल्दी से, और उसके बाद दीप्ति शर्मा की जो फील्ड आप देखते हैं ऑन साइड में, आपने तीन प्लेयर्स लिए, आप ब्लॉक कर रहे हो ऑन साइड बाउंड्री रविंद्र पाजी, उसके बाद बॉल आप लेग पर ही डाल रहे हो और सेट बैट्समैन को, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है।
3: देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि जैसे नंदिनी बॉल कर रही थी, दो एक डीप मिड विकेट और डीप स्केल लेके बॉल कर रहे हो, तो आपके पास दोनों प्रोटेक्शन ऑन साइड में है, तो आपको मजबूरन मिड विकेट मिडिल और लेग में बॉल करना पड़ेगा, जो कि वही हुआ, बिलोरा ने उनको छक्का भी मारा। एक स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहिए इनको कि प्रॉपर तरीके से आप लेग साइड के दो लेके आप डिफेंस, आप पहले ओवर से डिफेंसिव हो चुके हो, आपको पहला काम है विकेट्स लेना, विकेट्स लेके आप अटैक कर सकते हो। वही हुआ, शेषचंदी ने आके दो विकेट लिए तभी आप मैच में वापस आए, लेकिन जिस तरह से आप डिफेंसिव बॉलिंग शुरू करोगे तो उसमें तो आप पहले ओवर से मैच उनको देखे, उनको लूज खेल रहे थे, उनको कोई प्रेशर ही नहीं था। अगर वो चरनी के दो विकेट्स नहीं होते तो आप तो मैच 17 ओवर में हार चुके होते, जिस अगर ये बैटिंग कर रहे होते।
1: उत्तरा पावर प्ले बॉलिंग में इश्यूज हैं, ये साफ दिख रहा है हमको। अगले दो मैचेस जो हैं, पहला बांग्लादेश से 25 तारीख को और उसके बाद 28 जून को, जो कहना चाहिए कि हमारे लिए नॉकआउट मैच साबित हो सकता है, वो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। क्या इतने इश्यूज लेकर के हम उन मैचेस से जीतने की उम्मीद कर पाएंगे?
4: कि इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है बल्कि बांग्लादेश के साथ है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बांग्लादेश हल्की टीम है या हम उनके साथ जीत सकते हैं या इजी रहेगा, बट साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले शायद थोड़ा सा प्रेशर इंडिया पे कम रहेगा, इसलिए भी क्योंकि उनको पता है कि वो जो एक बहुत ही थिन मार्जिन होता है जो नेट रन रेट का आता है जिसपे फाइनली चीजें अटक सकती हैं, वो अभी भी उनके फेवर में ही चल रहा है इंडिया के डिस्पाइट द लॉस। और अगर बांग्लादेश के साथ हम अच्छा खेल जाते हैं और वो जीत जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से पहले एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडियन टीम को, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश से बेटर और कोई ओपोनेंट हो नहीं सकता था। थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए एक दो दिन है अभी इंडिया के पास रिकवर करने के लिए, रीग्रुप करने के लिए, अपनी गलतियां देखने के लिए, जैसा हरमनप्रीत ने बताया कि आप बैठ के देखेंगे कि कौन सा बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है, पर प्रेशर बिल्कुल रहेगा, खत्म बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अगर ये मैच इंडिया जीत जाती तो आपको उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑलमोस्ट क्लियर कट टॉप टू में बने हुए थे। इस मैच के बाद अब आपको बहुत सारे परम्यूटेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना गेम नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि साउथ अफ्रीका बाकी दो मैच कैसे खेलती है, और साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं, एक तो बांग्लादेशी है, दूसरा उनका मैच जहां हमारा ऑस्ट्रेलिया है जो वर्चुअल नॉकआउट हो सकता है, उनके लिए वो मैच नेदरलैंड्स का है जिसमें वो अपना रन रेट इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस हैं, हमें अब सिर्फ अपनी दो जीत नहीं देखनी है बल्कि दूसरे की हार की भी उम्मीद करनी पड़ेगी, और ये किसी भी टीम के लिए सबसे खराब सिचुएशन होती है क्योंकि चीजें अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। इस मैच तक पूरी तरह से इनका अपना फ्यूचर जो है वो इंडिया के कंट्रोल में था, अब आप थोड़ा उस पे से

0: हाथ छोड़ चुके हो।
1: और वहीं पे बता दें कि 25 तारीख को साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स के साथ खेलेगी और उसके बाद आखिरी मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका का भी। लेकिन चलते चलते बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, खास तौर से उन श्रोताओं का भी जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। तो रविंद्र सिंह जी आपका, वैशाली जी आपका और उत्तरा गणेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके एनालिसिस का। एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ वंडरफुल गेम मुदिता, इजंट इट?
2: जी बिल्कुल।
1: आप कुछ अगले गेम की प्रेडिक्शन करना चाहेंगी?
2: हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश ने कल जिस तरह से पाकिस्तान को हराया उससे उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, कहीं वो हमारे लिए नेट रन रेट में बाधा न बन जाए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान शायद भारतीय टीम को रखना चाहिए।
1: जी हाँ, और हम सब यहाँ से अब विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि 25 तारीख को भी भारत का जो मुकाबला होगा उसमें हमारे तमाम श्रोता हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। हम सब की तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: प्लेयर ऑफ द मैच।
4: अभी आप आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
6: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે। શ્રોતા મિત્રો, હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ માન્ચેસ્ટર ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલ આઈસીસી મહિલા T20 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2026નું જીવંત પ્રસારણ આકાશવાણીના દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી। આવો હવે સાંભળીએ ફિલ્મ દિલ એક મંદિર હૈનું આ ગીત लता मंगेशकरना स्वरमा।

0: શ્રોતા મિત્રો, આ સાથે જ ફિલ્મ સંગીત અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. થોડી જ વારમાં બરાબર 11 વાગે સાંભળશો દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર, અને ત્યારબાદ 11:05 અંગ્રેજીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં આશુતોષ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને કહા હૈ કે આજ કે દૌર મેં કિસી ભી દેશ કી આર્થિક ઓર સામરિક શક્તિ ઉસકે સમુદ્રી સામર્થ્ય પર કાફી હદ તક નિર્ભર કરતી હૈ. ઇસલિયે ભારત અપની સમુદ્રી ક્ષમતાઓં કો લગાતાર મજબૂત કર રહા હૈ. પશ્ચિમ બંગાલ કી રાજધાની કોલકાતા મેં શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી બંદરગાહ પર આજ સ્વદેશ નિર્મિત 3 યુદ્ધપોતો કો ભારતીય નૌસેના મેં શામિલ કરને કે બાદ પ્રધાનમંત્રી ને યહ બાત કહી. ઇસમેં અત્યાધુનિક સ્ટેલ્થ ફ્રિગેટ, INS દુનાગીરી, સંશોધક ઓર અગ્રય શામિલ હૈ.
2: ભારત આજ અપને પૂરે મેરીટાઇમ ઇકોસિસ્ટમ કો સશક્ત બના રહા હૈ. ઇસલિયે આજ ભારત અપને બંદરગાહો કા આધુનિકરણ કર રહા હૈ, નઈ ક્ષમતા તૈયાર કર રહા હૈ, નઈ કનેક્ટિવિટી બના રહા હૈ, નદી જલમાર્ગો કા વિસ્તાર કર રહા હૈ, મલ્ટી મોડલ લોજિસ્ટિક નેટવર્ક વિકસિત કર રહા હૈ. સાગરમાલા જૈસે અભિયાન ઇસી વ્યાપક સોચ કા હિસ્સા હૈ.
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया. सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा. नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई. एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया. देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे. तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री CJ ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है. अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है. यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं. यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है. हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है. इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली.